मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल

0: स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शतों श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से ये भाव पैदा होता है। भाव से ही भक्ति होती है और जहां मैं मिट जाए बस तू ही तू रह जाए, वहीं पे भक्ति रस का जन्म होता है। इसी

हे शिव शंकर, आप अनंत अनादि देवों के देव महादेव हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

सदा राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा, अर्थात कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे सरल साधन राम नाम ही है।

0: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं एनी बेसेंट के विचार।
1: आज जिन स्वतंत्रताओं को हम बिल्कुल सही, स्वाभाविक और निश्चित मान बैठे हैं, उसके लिए हमें कुर्बानी की जिन राहों से गुजरना पड़ा है वो अनगिनत हैं। हमारी आज़ादी की कहानी प्रयासों और संघर्षों की कहानी है। ये कहानी है विफलताओं की, पीछे न हटने के आग्रह की, सत्याग्रह की, अहिंसा के अस्त्र से चलाए गए अभियानों की, जबरदस्त हलचलों और अत्याचारों के सैलाबों की। और इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार रही हैं एनी बेसेंट। उनके विचार आज भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। आपका मानना था यदि अपनी स्वतंत्रता को पाना है तो हमें जद्दोजहद से गुजरना होगा। वो कहा करती थी, ये ऐसे दिन हैं जिनसे होकर भारत को गुजरना ही है। इन वर्तमान अड़चनों को पार करके इसको वो सब कुछ मिलेगा जिसका यह हकदार है। मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, दूसरों को भी करना चाहिए। उनके ये विचार हमें ये बताते हैं कि हमें अपने लिए निर्धारित कार्य को अंजाम देकर ही कुछ पाना है। जीवन कुरुक्षेत्र है और इस कुरुक्षेत्र में विजय उसी के साथ है जो स्वार्थ रहित होकर अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। आज हमारे कार्यक्षेत्र सीमित दायरों में कैद होते जा रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य धनार्जन रह गया है। दिनों दिन हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हम सदैव धन पिपासु बने रहते हैं। आज धन संपत्ति का होना ऐश्वर्य का प्रतीक बनता जा रहा है। ये कदापि उचित नहीं, एनी बेसेंट इस संबंध में प्राय कहा करती थी। अगर तुम धन को संपत्ति नहीं बल्कि सेवा करने का एक साधन समझो तो तुम्हें रुपयों की कभी कमी नहीं रहेगी। सच ही तो है, भला मानवीय मूल्यों के समक्ष धन की सत्ता कब तक टिकी रह सकती है। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सभी जानते हैं। परंतु हम अपने इस शत्रु को बड़े प्यार से सराहते हैं, दुलारते हैं। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हम किसी का अपमान करने, किसी का हक छीनने, किसी को पीड़ित करने से भी बाज नहीं आते। और इसी में अपने दायित्वों और जीवन के उद्देश्यों की इति श्री मान लेते हैं। ये आचरण अशोभनीय तो है ही, मानवीय दृष्टिकोण से भी किसी पाप से कम नहीं। इस बारे में एनी बेसेंट कहा करती थी, अहंकार विनाश की जड़ है और किसी का हक छीनना पाप है। किसी महान उद्देश्य के लिए त्याग करने में जो आनंद मिलता है उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। किसी के दुख में साथ देने से बढ़कर कोई सुख नहीं। जो आनंद किसी के हित के लिए काम करने से प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। ये ऐसा आनंद है जो ईश्वर के लिए करने से मिलता है, जो हमारे भीतर ही अपने को प्रकट करता है, जो अपनी कीर्ति एवं यश के प्रति हमारी आंखें बंद होने पर भी हमें आगे बढ़ाता है। सिर्फ वही, मात्र वही काम करने वाला है, सिर्फ वही त्याग है। हमारे दिलों में रहकर सेवा भाव की सिर्फ वही प्रेरणा है। और यूं ही हम ये जान जाते हैं कि ये सत्य है, त्यों ही हम ये मान लेते हैं हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क जो भी काम करते हैं उनमें से कोई भी हमारा काम नहीं है। तब हम अनुभव करते हैं कि जो हम अच्छा करते हैं उसके पीछे यकीनन कोई अदृश्य शक्ति है, और वो शक्ति अपने आप में किसी से कम या कमजोर नहीं होती, और वो शक्ति कहीं दूर नहीं।
0: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे एनी बेसेंट के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे मन्ना डे, अनुराधा पौड़वाल, नरेंद्र चंचल और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री राम

चरितमानस गान कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी चंद्रभान सिंह रावत की वार्ता, जिसका विषय होगा गर्मियों के खाली समय में किसान भाई क्या करें। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉ. परिणीता बंसल बांझपन के कारण और उसके उपचार के विषय में जानकारी देंगी।

सीमा पोरवाल के कई लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन।

11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा के बारे में और सुन पाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता एवं एहतियात जरूरी। एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे, विषय होगा नवाचार और डिजिटल तकनीक से सर्वसुलभ होते संग्रहालय। और 12 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे स्वावलंबन से बढ़ता स्वाभिमान, इस विषय पर सरोज शर्मा की वार्ता। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा एड्स जानकारी ही बचाव। आशा भोसले के गाए गीत हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे सोनी चौधरी की वार्ता, जिसका विषय होगा साझा सांस्कृतिक विरासत है हमारी साझी जिम्मेदारी। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत, इतिहास के पन्नों से हम बात करेंगे प्रे विहार मंदिर के बारे में और नई पहल के तहत हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के विषय में। 6 बजे क्रमेलो कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी गर्मी के मौसम में आंखों की देखभाल विषय पर डॉक्टर वाणी अग्रवाल से राम सेवक की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मस्तूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा पेड़ लगाओ थरा बचाओ। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुक्ल बिलावल में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं, वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य

ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं चंद्रभान सिंह रावत की वार्ता। विषय है गर्मियों के खाली समय में किसान भाई क्या करें।
1: किसान भाइयों, वैसे तो वर्ष भर आप लोग खेती बाड़ी के कार्यों में लगे ही रहते हैं, किंतु गर्मी के दिनों में आप लोगों का अधिकांश समय या तो चौपालों पर गपशप करने में या फिर सारा दिन ताश के पत्ते खेलने में व्यर्थ होता है। कुछ किसान भाई पूरा दिन या दिन के अधिकांश घंटे सोने में ही गुजार देते हैं, जो कि व्यवहारिक बात नहीं है। रवि फसल की कटाई मड़ाई व थ्रेसिंग के बाद खरीफ की फसल की बुवाई के मध्य का पूरा समय यों ही बर्बाद चला जाता है। गर्मियों के खाली

समय में आप लोग क्या-क्या कार्य कर सकते हैं तथा अपने बेशकीमती समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इस संबंध में कुछ मोटी-मोटी बातें बता रहा हूँ। किसान भाइयों, देखिए, आप लोगों ने रबी में जो फसलें ली हैं उनका भंडारण आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए अनाज को साफ कर लेना चाहिए, अगर उसमें नमी है तो अनाज को सुखा लीजिए, इसके बाद ही भंडारण कीजिए। भंडारण हेतु सल्फास या EDB एम्पुल जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच बीच में इसे देखते भी रहिए जिससे कि अनाज खराब न होने पाए। इस प्रकार अनाज सुरक्षित भी बना रहेगा तथा बाजार में ले जाने पर उसका उचित मूल्य भी आप प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो है भंडारण करने से पहले ये अवश्य देख लें कि आपका अनाज अच्छी तरीके से साफ है, उसमें कहीं गांठा गठूरा तो नहीं मिला हुआ है। इस समय आप खेतों की जुताई अवश्य करें। खाली पड़े खेतों की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 3-4 बार गर्मी के खाली समय में कर सकते हैं। ऐसा करने से कई लाभ हैं। एक तो भूमि की संरचना में सुधार होता है, साथ ही खेत की मिट्टी में रहने वाले कीड़े मकोड़े आदि भी मर जाते हैं। ऐसा करने से भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, जो कि कृषि हेतु फायदेमंद क्रिया है। प्राय यह देखा गया है कि हमारे ज़्यादातर किसान भाई वर्ष में केवल रबी व खरीफ की फसल ही लेते हैं। जायद की फसल तो बहुत कम किसान भाई उगाते हैं तथा फसल चक्र के हिसाब से अपने खेतों में फसल नहीं लगाते हैं। आप लोग गर्मी के इस खाली समय में फसल चक्र एवं इसकी कार्य योजना तैयार करवा सकते हैं। यह जानकारी आपको अपने कृषि सेवा केंद्रों से, रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकती है। इस कार्य हेतु आप लोग उचित परामर्श कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिकों से भी प्राप्त कर तथा फसल चक्र अपनाकर अपने समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। जायद में आप लोग टमाटर, ककड़ी, शिमला मिर्च, बैंगन, खरबूजा, तरबूजा, मूली और सूरजमुखी आदि जैसी फसल प्राप्त कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। छोटी छोटी जोत वाले किसान भाई सहकारी खेती कर सकते हैं, इसके भी अनेक लाभ हैं। आजकल खेती भाड़े पर अधिकांश किसान भाई कराते हैं। खेत की जुताई से लेकर थ्रेसिंग तक का कार्य भाड़े पर कराते हैं। इस प्रकार खेती से अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे कृषक भाई आपस में मिलकर खेती संबंधी सभी कार्य मिलजुल कर स्वयं करें। इसके लिए बैल रखें तथा स्वयं देसी हल से जुताई का कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपसी सहयोग से सिंचाई की व्यवस्था हेतु अपना निजी नलकूप स्थापित करा लें तो वर्ष भर ठीक रहेगा। फसलों का उत्पादन लेकर काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि प्रति हेक्टेयर लागत कम आएगी, फलतः आप लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, साथ ही पूरे वर्ष कार्य भी आपको मिलता रहेगा। किसान भाइयों, हमारी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कृषि गोष्ठियों या कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अच्छे उन्नतशील बीज एवं अच्छी तकनीक द्वारा आप लोगों को अवगत कराया जाता है। खाली समय का सदुपयोग ऐसे आयोजनों में जाकर आप लोग कर सकते हैं। कृषक बहनें भी गर्मी के समय भैंस पालन कर इनका इस कार्य में सहयोग कर अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इसमें सहकारिता विभाग द्वारा संचालित दुग्ध क्रय समितियां ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अतः गर्मी के मौसम में भैंस पालन कर तथा

0: समिति की सदस्य बनकर अपना दूध इन्हें दुग्ध संग्रह केंद्र जो कि आपके यहाँ भी स्थापित हो सकता है को दूध अच्छे दामों पर बेचकर अपेक्षित लाभ अर्जित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अपने गर्मी के खाली समय में अचार मुरब्बा जैम जेली बना सकती हैं। ब्रज क्षेत्र की महिलाएं टैटी के अचार डाल सकती हैं। टैटी एक सस्ता है एवं खेतों पर इंद्रों में आसानी से मिल जाता है। इसका अचार पेट संबंधी रोगों के लिए रामबाण औषधि का कार्य करता है। अचार तो प्राय सभी कृषक बहनें तैयार कर सकती हैं। जैम या जेली बनाने का प्रशिक्षण वे फल संरक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। इन्हें कृषक बहनें आसानी से बना सकती हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार कर आप अपने गर्मी के खाली समय का सदुपयोग कर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर साथ ही अपने राष्ट्र को भी समृद्धशाली बना सकते हैं। और इसके साथ साथ चलते चलते एक बात मैं और आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि कंपोस्ट खाद के गड्ढे आपने जो बना रखे हैं उसमें जो आपकी खाद सड़ रही है उसको दो चार बार उलट पुलट करके रखें जिससे कि उसकी उपजाऊ शक्ति में और वृद्धि हो जाती है और अच्छा खाद तैयार हो जाता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी चंद्रभान सिंह रावत की वार्ता। वर्षा गर्मियों के खाली समय में किसान भाई क्या करें, आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रांतर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी

0: सः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतम् श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानम् स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई

अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दंपत्ति साथ साथ रह रहे हैं और मिलते हैं और एवं कोई भी परिवार नियोजन का तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो करीब 6-7 माह में गर्भ ठहर जाता है एवं 5 में से 4 महिलाएं विवाह के पहले वर्ष में ही गर्भवती हो जाती हैं। अगर इन्हीं परिस्थिति में दंपत्ति के साथ रहने के बावजूद यदि 1 से 1.5 साल के अंदर गर्भ नहीं ठहरता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को अपना पूरा चेकअप और जांच करवानी चाहिए। बांझपन के कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से हार्मोनों का संचार होता है, कैसे वो स्रावित होते हैं, कहाँ से, ये सारी फिजियोलॉजी समझनी होगी। हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि से FSH NLH नाम के हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि प्रति माह महिला के अंडाशय में से अंडा बनने की प्रक्रिया इन्हीं के प्रभाव में होती है और हर माह महिला के अंडाशय पे उसके अगले महीने के आने से 14 दिन पहले के करीब फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं और उनमें से एक फॉलिकल फटकर उसमें से एक ओवम रिलीज होता है जो कि गर्भाशय के अंदर नलों के माध्यम से जाता है और गर्भाशय के इसके साथ साथ गर्भाशय के अंदर भी चेंजेस होते हैं और उसी के फलस्वरूप मासिक धर्म होता है। अभी संडे का नलों के माध्यम से बच्चेदानी में पहुंचना प्रजनन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी को देखते हुए हमें महिलाओं में बांझपन के कारणों को देखना होगा। किसी भी महिला में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बांझपन का है वह ये है कि इसमें कोई जन्मजात विकृति ना हो गर्भाशय में, नलों में, अंडाशय में तथा बच्चेदानी के रास्ते में। और नंबर 2, अगर उसमें जन्मजात विकृति नहीं है तो उसमें अंडा समय से ना बनना महिला में, और अगर अंडा समय से बन रहा है तो अंडे का समय से ना फटना, जिसको कि ल्यूटिनाइज्ड अनराप्चर्ड फॉलिकल कहते हैं। अगर महिला के अंडाशय से अंडा बन जाता है तो एक अन्य कारण हो सकता है जिसके कारण उसको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो ये है कि उसकी बच्चेदानी के आसपास जो दोनों नले होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण उनमें बाद में जाले बन जाते हैं जिसके कारण नलें दोनों अंदर से चिपक कर आपस में ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिला में अंडा ठीक से बन रहा है लेकिन चूंकि उसके नले ब्लॉक हैं तो वो अंडा नलों से होकर बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरी चीज, बच्चेदानी के अंदर कोई खराबी ना हो, कोई रसौली, कोई ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि ना हो। बच्चेदानी के मुंह पर मोटा म्यूकस प्लग होना भी इसके लिए एक खराब बात है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एक महिला को तथा उसके पुरुष साथी को दोनों का ही हमें टेस्ट करवाने होंगे और दोनों से ही हमें अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते हमें महिला से अलग प्रश्न पूछने होते हैं, पुरुष से अलग, और उसके पश्चात दोनों से हम साथ साथ प्रश्न पूछते हैं। उनकी कोई भी पुरानी बीमारी, ऑपरेशन, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तथा महिला या पुरुष का ये पहला विवाह है या दूसरा, और पुरुष के बारे में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो काम क्या करते हैं, उन्होंने कोई दवा वगैरह क्या ले रहे हैं, कितने सालों से ले रहे हैं, ये सब पूछना चाहिए। पुरुषों में सीमेन एनालिसिस करवानी चाहिए और महिलाओं का जैसे अंदरूनी चेकअप करने के पश्चात अगर बच्चेदानी ठीक है तो उनका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। एक टेस्ट जिसको हिस्टीरोसेल्फिंगोग्राफी कहते हैं, दूसरा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टीरोस्कोपी करवाया जा सकता है। हिस्टीरोसेल्फिंगोग्राफी में बच्चेदानी के अंदर एक डाई इंजेक्ट करते हैं और बच्चेदानी के एक्सरे लेते हैं। इस प्रकार से अगर महिला में कोई कमी आती है तो हमें उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी बांझपन के कारण और उसके उपचार के विषय में डॉ. परिणीता बंसल की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशकान।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में।
1: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने MSME विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न

0: जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त चार राज्य

0: अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त चार राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपये, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला

0: पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
1: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने MSME विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आसपास में होगी कुछ दैनिक सूचनाएं, साथ ही हम जानकारी देंगे कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत।

सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। श्रोताओं, सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद पढ़ाई 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 15 दिनों की सर्दी की छुट्टियों की घोषणा भी की गई है। शैक्षणिक कैलेंडर में प्रथम सेमेस्टर के नए छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तृतीय और पंचम सेमेस्टर के छात्रों का शिक्षण कार्य 21 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण कार्य 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए कुल 15 सप्ताह या फिर 90 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है। प्रथम सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 नवंबर तक संपन्न करा ली जाएंगी और सेमेस्टर की लिखित परीक्षाएं 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 30 दिनों तक आयोजित की जाएंगी। वहीं विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2027 तय कर दी है। सभी संबद्ध महाविद्यालयों को तय समय सीमा के भीतर ही आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ताकि 6 जनवरी 2027 तक हर हाल में परिणाम घोषित किया जा सके। श्रोताओं, कैलेंडर के मुताबिक विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में इस वर्ष 15 दिनों की सर्दी की छुट्टियों की घोषणा भी की गई है और शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। तो इस तरह विश्वविद्यालय में 21 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। और ये था विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर।

श्रोताओं, जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। अगर ऐसे में छात्रों को ये तनाव रहेगा कि वो क्या करें, तो चलिए हम उनको बता दें कि आगे वो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से छात्र बी फार्म, डी फार्मा के साथ ही बीएससी कृषि कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के छलेसर परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंस में छात्र प्रवेश ले सकते हैं। एस छलेसर परिसर में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम 2 वर्ष से संचालित हो रहा है। छात्र यहां से 4 वर्षीय बीएससी कृषि में ऑनर्स भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल साइंस बी फार्मा, डी फार्मा सहित अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। छलेसर परिसर में अत्याधुनिक लैब के साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट dbrau.aac.in पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। पुनः नोट कर ले, वेबसाइट dbrau.aac.in पर, इसमें आपको समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसमें छात्रों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा। छात्र देश के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करे, उसका एबीसी नंबर कभी नहीं बदलेगा और समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का शुल्क 400 रूपये है। किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए हेल्प

ईमेल आईडी samarthdbrau@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस आईडी को पुनः नोट कर लें, आईडी है samarthdbrau@gmail.com।

श्रोताओं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, तो ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क घटाकर 100 रूपये कर दिया है। अब छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मात्र 100 रूपये में प्राप्त कर सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए 700 रूपये देने पड़ते थे। सत्यापन और वैलिडेशन शुल्क भी 500 से घटाकर 100 रूपये कर दिया गया है। किसी विशेष प्रश्न की दोबारा जांच के लिए छात्रों को 25 रूपये प्रति प्रश्न शुल्क देना होगा। ऐसे में परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गई है, जिसमें अंक सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी शामिल है। अगर पुनर्मूल्यांकन के बाद किसी विद्यार्थी के अंक बढ़ते हैं तो ली गई फीस वापस कर दी जाएगी। विद्यार्थी 19 से 22 मई तक मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वे उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा कर त्रुटियां भी नोट कर सकते हैं। 26 से 29 मई तक दूसरी विंडो खुलेगी, जिसमें छात्र उत्तर पुस्तिका में मिली गड़बड़ियों को लेकर आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, छात्रों का तनाव कम करने के लिए टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। ईमेल सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि विद्यार्थी आसानी से अपनी शंकाओं का समाधान पा सकें।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, अधिक मास मेले के दौरान गोवर्धन में 17 मई यानी कि रविवार से 16 जून तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं और परिक्रमा करने आने वालों की सुविधा और यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध प्लान तैयार किया है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा और दर्शन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे देखते हुए गोवर्धन कस्बा और परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर विभिन्न स्थानों पर रोक लगाई गई है। इसके लिए जमुना वता से दानघाटी मंदिर की ओर आने वाले वाहनों को ब्लॉक तिराहे से राजीव तिराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसी तरह नीमगांव फाटक से डीग, बरसाना, छाता और मथुरा जाने वाले वाहन बाईपास मार्ग से होकर जाएंगे। डीग रोड नीमगांव बाईपास से गोवर्धन कस्बे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मेहमदपुर बंबा चौराहा, सौख अड्डा, डीग रोड बाईपास, हरजीकुंड, जतिपुरा अड्डा, मुखराई तिराहा, नई तहसील, सरस्वती कुंड तिराहा मार्गों से परिक्रमा मार्ग और गोवर्धन कस्बे की ओर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह राजस्थान की ओर से आने वाले वाहनों को मेहमदपुर बंबा बाईपास के आगे गोवर्धन कस्बे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एकता तिराहे से राधाकुंड की ओर जाने वाले वाहनों को जमुनावता की ओर डायवर्ट किया जाएगा। गोवर्धन अनाज मंडी, जमुनावता हेलीपैड, मल्टीलेवल पार्किंग

पर पार्किंग बनाई गई है। तो अगर आप इन दिनों में यानी कि 16 जून तक गोवर्धन में जाते हैं तो जरा संभल कर आए। श्रोताओं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अधिक मास रविवार से शुरू हो गया। पहले दिन ही कान्हा की धरा भक्ति से सरापोर हो गई। सुबह से ही हर ओर राधे राधे कृष्णा कृष्णा के जयघोष गूंज उठे। भक्तों ने ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करना भी शुरू कर दिया। भक्ति की चमक के आगे सूर्य देवता की तपिश भी कमजोर पड़ गई। भक्तों की कदमताल से ब्रज चौरासी कोस मार्ग महक उठा। भक्ति और आनंद का संगम परिक्रमा मार्ग में हो रहा है। नंगे पैर आस्था के मार्ग पर पग पग बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य की गर्मी से पसीना तो आ रहा है, लेकिन इसमें भक्ति का आनंद मिल रहा है और भक्तों की सेवा के लिए ब्रजवासियों ने भी अपना दिल खोल दिया है। पेयजल चाय भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सेवा कर अपने को धन्य समझ रहे हैं लोग, जैसे कि कान्हा ने कृपा बरसाती हो। श्रद्धालु भी मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों का दर्शन कर वैभव का आनंद ले रहे हैं। धार्मिक स्थलों का महत्व जानकर सभी भाव विभोर होते जा रहे हैं। ब्रज चौरासी के पग पग पर भगवान श्री कृष्ण राधा के क्रीड़ा स्थल है।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को

0: दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। आइए आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। दीपक खरवानी पुत्र भूषण लाल खरवानी निवासी 97/3 बल्केश्वर कॉलोनी कमला नगर आगरा से दिनांक 7 अप्रैल 2026 से लापता है। दीपक की उम्र 32 वर्ष और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय दीपक ने ग्रे रंग की शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। दीपक के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना कमला नगर आगरा के पति पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार रामाकांत पुत्र कौशल सिंह निवासी ग्राम ऊंचा थाना शमशाबाद आगरा से दिनांक 14 अप्रैल 2026 से लापता है। रमाकांत की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, चेहरा लंबा और रंग सांवला है। इसके साथ साथ रमाकांत की हल्की दाढ़ी भी है। गुमशुदगी के समय रमाकांत ने काली टी शर्ट काला लोअर पहना हुआ था। रमाकांत के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना शमशाबाद आगरा के पति पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार अनिल पुत्र रणवीर सिंह निवासी जाजऊ थाना सैया आगरा से दिनांक 13 जनवरी 2026 से लापता है। अनिल की उम्र 38 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, चेहरा गोल और रंग के हुआ है। गुमशुदगी के समय अनिल ने शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। अनिल के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सैया आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, 7 मई से शुरू हुई स्वगणना में डिजिटल मैप पर घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कारण है, मैप में नई आबादी वाले घर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिख रहे। ऐसे में जिला प्रशासन ने सलाह दी है कि घर न मिलने की स्थिति में गांव या मोहल्ले पर क्लिक कर सकते हैं। जनगणना इस बार पूरी तरह से डिजिटल है। पहली बार स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी जानकारियां स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। स्वगणना पोर्टल पर अपना राज्य चुनकर कैप्चा भरते हुए पहला पेज खुलता है। इसमें सबसे पहले नाम या मोबाइल फोन नंबर डालने के बाद ओटीपी दर्ज करना होता है। लॉगिन के बाद जानकारियां दर्ज करने के साथ साथ ही डिजिटल मैप खुलता है, जिसमें अपने घर की लोकेशन पिन करनी होती है। तो ऐसे में डिजिटल मैप पर यदि किसी को अपना घर नहीं दिखता तो वो अपने गांव या मोहल्ले पर ही क्लिक करके जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद शेष जानकारियां दर्ज करने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। हम आपको बता दें कि स्वगणना पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर कोई नागरिक तकनीकी कारणों से इसे पूरा नहीं कर पाता है तो 22 मई से प्रगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे।

शबा जिल हिज का चांद नजर न आने के कारण इस्लामी महीने की शुरुआत अब 19 मई से होगी, जबकि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी।

को रवि ने शहरवासियों को तपाया। सुबह से तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की किरणें तीखी होती चली गईं और लू ने हाल बेहाल कर दिया। घर से बाहर निकलने पर त्वचा झुलस गई। जरूरी काम होने पर ही शहरवासी घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 18 से 21 मई के लिए जारी अलर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ ही लू चलेगी। प्रदेश में कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं होने से मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के साथ ही विकरणीय ऊष्मन बढ़ने से आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और लू भी चलेगी। तो ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घर से निकलने से बचें, यानी कि जरूरी काम हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। दोपहर में लंबे समय तक धूप के संपर्क में आने से बचें। हल्के ढीले हल्के रंग के पूरे बांह के सूती कपड़े पहनें। सबसे जरूरी बात, धूप में जाते समय सिर को कपड़े से या टोपी से या छाते से ढक कर रखें। इसके साथ साथ पानी की कमी ना हो उसके लिए स्वयं को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस का घोल, घर में बने पेय पदार्थ, लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी और छाछ का उपयोग करें। इसके साथ साथ अगर आप बाहर निकलते हैं, यानी कि बहुत जरूरी है और आपको घर से बाहर निकलना ही है, तो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें। छाता जरूर लेकर जाएं और अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलें और समय समय पर थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल।

और आज की इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष,

0: भर्ती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री

0: मंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3rd और चेन्नई 6th स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: uv.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders

0: Hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Stark took 4 wickets, which was later judged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakel.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honor on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is the top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states, drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। यह अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराहे हुकूमत को दिया जाता है। यह वजीर आजम मोदी का 31वां बैनुल अक्वामी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और

0: अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले पांच साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अजम का यादा है। गोतेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोतेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड 5 और जनाब मोदी किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमानिगार से।
3: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वजराय आला, सुबुकदोश वजीर आला PNRAI विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूरदराज के इलाकों में रिहायश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज्रायाला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक्द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निजाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली

0: कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। स्वर थे अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म थी रंग।

साथियों, दीवाना फिल्म से अभी आप सुन रही थी कुमार सानू और साधना सरगम को। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। और अब लीजिए सुनिए साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक को। शब्द रचना एक बार फिर से समीर की है और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र, प्रस्तुत किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। और अब लीजिए समय कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक की बोल है जावेद अख्तर की, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम है मृत्युदंड।

श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है तक्षक। स्वर है आशा भोसले का, गीतकार है सुखविंदर सिंह, संगीतकार है ए आर रहमान।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिलाधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिलाधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के साथ रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
2: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया

0: नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं, उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय, और 19 हमारे पास जो हैं, वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं, और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
1: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कंक्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
2: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्ति कला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालु आधुनिक

समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों और विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक सेल्फ इन्यूमेरेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी

0: निवेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि जनगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगलीनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंगलीनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंगलीनाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, दिलों में आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की शब्द रचना। स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश के, फिल्म थी संगम। और अब लीजिए सुनिए फिल्म लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर को। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जय किशन।

श्रोताओं, रवि के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी की शब्द रचना, स्वर थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, फिल्म थी हमराज। और अब लीजिए सुनिए फिल्म मेरी हमदम मेरे दोस्त से मोहम्मद रफी को। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, मोहम्मद रफीके का इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं सीमा पोरवाल के गाए कुछ लोकगीत।

सीमा पोरवाल के गाय इस लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत है पुकार फिल्म से, स्वर है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की, बोल है मजरू सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर की, धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

साथियों, ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे हैं प्रसून जोशी की शब्द रचना। स्वर है मधुश्री और नरेश अय्यर के, फिल्म है रंगते बसंती।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ओमकारा फिल्म से श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज को। गुलजार के फूलों को संगीत से सजाया था विशाल भारद्वाज ने।

आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, स्वर है मिथुन अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति के। गीतकार है मनोज मंतशर, संगीतकार है मिथुन, फिल्म का नाम है

आइए अब आपको सुनवाती है कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है मिथुन अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति के। गीतकार है मनोज मंतशर, संगीतकार है मिथुन। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

श्रोताओ, जब आप अपने मन को भय, संदेह और नकारात्मक सोच से मुक्त करके उसमें विश्वास, कृतज्ञता और आशा का प्रकाश भरते हैं, तभी जीवन वास्तव में बदलना शुरू हो जाता है। संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा आपका अंतर्मन होता है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाइए। अपनी भावनाओं को प्रेम से भरिए और हर परिस्थिति में संभावनाएं खोजिए।

आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग आसावरी में ख्याल गायन।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी द्वारा राग असावरी में ख्याल गायन। लीजिए अब प्रस्तुत है राग बिलावल में ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

श्रोता भी सुन रहे थे राग बिलावल में कलाकार पंडित भीमसेन द्वारा ख्याल गायन, और कार्यक्रम था शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल फिल्में नहीं बनाते बल्कि एक युग रच देते हैं। जब भी 70 और 80 के दशक के सिनेमा की बात होती है तो एक चेहरा पर्दे के पीछे से उभरता है, एक ऐसा चेहरा जिसने केवल फिल्मों का निर्देशन नहीं किया बल्कि भारतीय दर्शकों की धड़कनों को पढ़कर ऐसे किरदार गढ़े जो आज भी लोगों की यादों में जीवित हैं। कहा जाता है श्रोताओं कि कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग समय को बदल देते हैं। आज ऐसे ही जीवन का सफर हम तय करेंगे आपके साथ एक ऐसे कलाकार के साथ। जी हां, एक ऐसा कलाकार या यूं कहें एक ऐसा फिल्मकार जिसने एंग्री यंग मैन को अमर बना दिया। संघर्ष, सपनों और शोहरत का दूसरा नाम प्रकाश मेहरा। जी हां, प्रकाश मेहरा उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों का चेहरा बदल दिया। उनकी फिल्मों में संघर्ष था, बदला था, दोस्ती थी, मां का दर्द था, गरीबी थी, अमीरी का घमंड था और सबसे बढ़कर था इंसान की जीत का विश्वास। जब सिनेमा घरों में उनकी फिल्में लगती थीं, तो टिकट खिड़कियों पर लंबी कतारें लग जाती थी। दर्शकों को पता होता था कि यदि फिल्म का नाम प्रकाश मेहरा से जुड़ा है तो कहानी में भावनाओं का तूफान तो जरूर होगा। उन्होंने ऐसे दौर में फिल्में बनाई जब भारत सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान युवा वर्ग को उन्होंने पर्दे पर एक आवाज दी और यही कारण था कि उनकी फिल्मों के नायक आम जनता के दिलों में उतर गए। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ समाज का आईना भी दिखाई देता था। वे जानते थे कि दर्शक केवल हंसना नहीं चाहता, वह अपने दर्द को भी पर्दे पर देखना चाहता है। एक शायर ने कहा है कि जो कहानी दिल से निकले वही अमर हो जाती है, वरना दुनिया रोज किस्से सुनकर तो भूल जाती है। प्रकाश मेहरा की कहानियां दिल से निकली थी, इसीलिए तो वे आज

इस प्यारे से गाने के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका आपके अपने कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आप और हम मिलकर तय कर रहे हैं आज जीवन का सफर, जिन्होंने संघर्ष और सपनों और शोहरत को अपने जीवन में हासिल किया और संघर्ष सपनों और

और शोहरत का जो दूसरा नाम रहे प्रकाश मेहरा। तो आज हम और आप मिलकर पन्ने पलट रहे हैं प्रकाश मेहरा के जीवन के। यदि उनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाए श्रोताओं, तो प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन सपनों की कोई भी कमी नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने फिल्मों और कहानियों से गहरा लगाव रखा। उस समय भारतीय सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा था और युवा प्रकाश मेहरा की आंखों में भी बड़े पर्दे का एक सपना पलने लगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई का रुख किया। उस दौर में मुंबई हजारों सपने देखने वालों का एक शहर था, लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिलती थी। संघर्ष यहाँ की पहली शर्त थी और प्रकाश मेहरा ने भी छोटे छोटे कामों से अपने संघर्ष की शुरुआत की। कभी प्रोडक्शन में काम किया तो कभी सहायक के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझा। वे जानते थे कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। उस समय बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक पहले से ही मौजूद थे। नए लोगों को अवसर कम मिलते थे, लेकिन प्रकाश मेहरा में आत्मविश्वास था। उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वे अपनी अलग पहचान बनाएंगे। निर्देशक के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हसीना मान जाएगी से की। धीरे धीरे उनकी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, लेकिन असली सफलता उन्हें तब मिली जब उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई। यह मुलाकात केवल दो कलाकारों का मिलन नहीं था, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। साल 1973 में आई फिल्म जंजीर ने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था, लेकिन प्रकाश मेहरा ने समाज के गुस्से को महसूस किया। उन्होंने एक ऐसे नायक को प्रस्तुत किया जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। अमिताभ बच्चन ने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया और रातों रात सुपरस्टार बन गए। यह फिल्म केवल हिट नहीं हुई, बल्कि इसने एंग्री यंग मैन की छवि को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब समाज में दर्द बढ़ता है, तब कला क्रांति बन जाती है, और जंजीर भी एक ऐसी ही क्रांति थी। भारतीय सिनेमा में श्रोताओं कई सफल जोड़ियां बनी, लेकिन प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी सबसे यादगार मानी जाती है। तो आइए उनकी एक ऐसी ही अगली फिल्म का एक प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप ये नगमा सुन रहे थे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भारतीय सिनेमा में कई सफल जोड़ियों में से मानी जाती थी और ये जोड़ी सबसे यादगार मानी जाती है। विशेष रूप से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म ने दर्शकों को रुला दिया, क्योंकि इसमें एक अनाथ लड़के की दर्द भरी कहानी लोगों के दिलों में उतर गई। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। इन फिल्मों में भावनाएं, संवाद, संगीत और अभिनय सब कुछ शानदार था।

वहीं नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्मों ने तो हास्य और भावनाओं का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया। प्रकाश मेहरा की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी कहानी कहने की शैली। उनकी फिल्मों में अक्सर ये तत्व दिखाई देते थे, जैसे कि संघर्षशील नायक, माँ बेटे का भावनात्मक रिश्ता, गरीबी और अमीरी का टकराव, दोस्ती और विश्वासघात, दमदार संवाद और यादगार संगीत। वे जानते थे कि भारतीय दर्शक भावनाओं से जुड़ता है, इसीलिए उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ दिल को छू लेने वाला दर्द भी होता था। वहीं श्रोताओं, यदि बात की जाए हास्य और भावनाओं के अद्भुत मिश्रण की, तो आइए उनका एक प्यारा सा नगमा उनकी एक फिल्म से हम सुनते हैं और आपको भी सुनवाते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार में।

श्रोताओं, फिल्म लावारिस से ये नगमा प्रकाश मेहरा के गीतों में हास्य का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रकाश मेहरा केवल निर्देशक ही नहीं बल्कि सफल निर्माता भी थे। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाला। वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे। उनकी फिल्मों का पैमाना बड़ा होता था, भव्य सेट, मजबूत पटकथा और शानदार प्रस्तुति उनकी पहचान बन चुकी थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा को व्यावसायिक सफलता के साथ साथ कलात्मक ऊंचाइयां भी दी। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। उनकी फिल्मों के गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं, विशेष रूप से किशोर कुमार की आवाज और अमिताभ बच्चन की अदायगी ने जादू पैदा कर दिया। पग गुंगरू बांध और दे दे प्यार दे, इंतहा हो गई इंतजार की, ये कुछ गीत जो आज भी सदाबहार हैं। एक पंक्ति उनकी फिल्मों पर श्रोताओं बिल्कुल सटीक बैठती है कि संगीत वह जादू है जो बीते हुए समय को भी जीवित कर देता है।

याद रखी जाएंगी। और अब समय हो चुका है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो जाते जाते अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ नाम किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखे जाते हैं, और प्रकाश मेहरा ऐसा ही एक नाम थे जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा चमकते रहेंगे। तो श्रोताओं, मिलेंगे कल एक नए सफर के साथ, एक नए कलाकार के साथ और कुछ नए मीठे मीठे गीतों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अपने रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।

0: लिया लिया ये जहां देख कर
1: श्रोताओं, प्रकाश मेहरा केवल एक निर्देशक नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय के रचनाकार भी थे। उनकी फिल्मों ने समाज को आवाज दी, युवाओं को पहचान दी और सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनके संघर्षों को सफलता में बदला। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत बनाया और भारतीय दर्शकों को एक ऐसी फिल्में दी जो पीढ़ियों तक

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, और अब समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जी हाँ, धन दौलत सब फीकी लगती जब तन मन बीमार हो जाए, स्वस्थ शरीर और शांत हृदय से जीवन में उजियारा आए। सोना चांदी महल अटारी सबका अपना मोल सही, पर अच्छा स्वास्थ्य ना हो तो खुशियां लगती अधूरी कहीं। मन में चिंता कम रखनी है, क्रोध से दूरी बनानी है, हंसना गाना खुश रहना ही स्वस्थ जीवन की निशानी है। जिसने स्वास्थ्य का मान किया उसने जीवन का सम्मान किया, स्वस्थ तन और निर्मल मन से हर मुश्किल को आसान किया। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी, स्वास्थ्य ही जीवन की शान, स्वस्थ रहे हर एक इंसान तभी बनेगा देश महान। जी हाँ श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज हम बेहद ही कुछ समसामयिक विषयों पर ये आधारित कार्यक्रम लेकर आए हैं, क्योंकि श्रोताओं आज है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। जी हाँ श्रोताओं, आज हम सभी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना और इसके बचाव के उपाय बताना तथा वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन में हर सपना पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब कोई बीमारी हमारे शरीर को लग जाती है तो वो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए चुनौती बन जाए, तब उसके प्रति जागरूक जो है होना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ऐसी कोई बीमारी जो कि एक मानव नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती हो तो उसके प्रति तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही ये गंभीर बीमारी है HIV यानी कि एड्स, और इसी के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे यानी कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन अभी भी एड्स जैसी बीमारी मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसीलिए समाज को जागरूक करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बीमारी से लड़ना आसान हो जाता है श्रोताओं, बीमारी से लड़ना आसान हो जाता है जब इंसान जागरूक हो जाता है। कुछ हमारे श्रोता तो अभी ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आखिर एड्स होता क्या है। तो आपको बता दें कि HIV यानी कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। यह बीमारी HIV वायरस के कारण

होती है। और जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे शरीर की सुरक्षा शक्ति जो है उसको कम करने लगते हैं और व्यक्ति अन्य बीमारियों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। एड्स के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित रक्त चढ़ने से, असुरक्षित संबंधों से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन के उपयोग से, संक्रमित माँ से बच्चे में या फिर अस्वस्थ चिकित्सा उपकरणों से फैल सकती है। लेकिन ये बीमारी जो है वो हाथ मिलाने, साथ बैठने, भोजन साझा करने या सामान्य बातचीत से नहीं फैलती, इसीलिए हमें भ्रम और डर से भी दूर रहना चाहिए। कई लोग जानकारी के अभाव में डर और गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, यही अज्ञानता समाज में भेदभाव पैदा करती है। श्रोताओं, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति, सहयोग और उपचार की आवश्यकता होती है, न कि तिरस्कार की। अज्ञानता डर पैदा करती है और ज्ञान विश्वास जगाता है, और जो जागरूक होकर जीता है वही जीवन बचा पाता है। तो विद्यालयों, कॉलेजों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से युवाओं को सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए आज के दिन को यानी कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को इसकी वैक्सीन के प्रति और इस बीमारी के प्रति भी जागरूक किया जाता है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। दुनिया भर के वैज्ञानिक एड्स की प्रभावी वैक्सीन खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई शोध और परीक्षण लगातार जारी भी हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह से सफल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा ने इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद की है। यह दिवस हमें विज्ञान और चिकित्सा के महत्व को समझने की प्रेरणा भी देता है। जी हां श्रोताओं, एड्स से बचाव के लिए सावधानी सबसे प्रभावी जो उपाय हैं वो हमें ये करने चाहिए कि स्वच्छ और सुरक्षित चिकित्सा उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए। रक्त चढ़ने से पहले रक्त की जांच करवानी चाहिए। किसी भी सुई या इंजेक्शन को साझा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। इन सावधानियों को अपनाकर संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और श्रोताओं, बात की जाए इस क्षेत्र में युवाओं की भूमिका की, तो युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। यदि युवा जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक बनेगा। आज सोशल मीडिया, विद्यालयों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा लोगों तक सही जानकारी हम पहुंचा सकते हैं और यही हम आपके इस रेडियो के जरिए से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा शक्ति जब जाग उठेगी, हर मुश्किल आसान बनेगी, ज्ञान और जागरूकता से ही सुरक्षित नई पहचान बनेगी। जी हां श्रोताओं, एड्स से पीड़ित लोगों को समाज से अलग करना गलत है। उन्हें प्रेम, सहयोग और सम्मान की आवश्यकता है। मानवता का यही संदेश है कि हर व्यक्ति के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। इंसानियत का धर्म यही है कि दुख में सबका साथ निभाएं, जो पीड़ा में जी रहे हैं उन्हें प्रेम और हौसला दिलाएं।

इस प्यारे से गाने के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। हम बात कर रहे थे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में और ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी के प्रति खुद भी जागरूक हों और अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करें। इसके साथ ही श्रोताओं आज इस दूसरे हम समसामयिक विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है संग्रहालय। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य होता है लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना। श्रोतों, आज के डिजिटल युग में संग्रहालय केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहे बल्कि अब वे इंटरनेट, वर्चुअल टूर, 3D मॉडल, ऑडियो गाइड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकों से जुड़कर लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जहां इतिहास मुस्कुराता है, जहां संस्कृति गान सुनाती है, वही संग्रहालय मानवता को अपनी जड़ों से मिलवाती है। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं होता बल्कि वह भविष्य को दिशा देने वाली एक चेतना भी होता है। मानव सभ्यता की पहचान उसके इतिहास, संस्कृति, कला और विरासत से होती है। यही विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। पहले संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान माने जाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। आधुनिक युग में संग्रहालय नवाचार, विज्ञान और डिजिटल तकनीकों से जुड़कर ज्ञान तथा मनोरंजन का अद्भुत केंद्र बन गए हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज विज्ञान और तकनीकी ने संग्रहालयों को एक नई पहचान दी है। पहले लोग केवल संग्रहालय जाकर बहुत सी वस्तुओं को देख सकते थे, लेकिन अब जब डिजिटल तकनीकों के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने के संग्रहालय को हम देख सकते हैं। कार्यक्रम में अभी समय हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर और हम बात कर रहे हैं कि नवाचार और डिजिटल तकनीक से सर्व सुलभ हो गए हैं हमारे संग्रहालय। कार्यक्रम में इस विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए श्रोताओं सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और हम आपको बता दें कि जिंदगी अपना पता आपको बताए ना बताए, लेकिन आधुनिक संग्रहालय जो है, यानी कि हमारे जो आजकल के मॉडर्न म्यूजियम्स जो हैं, वो आपको वर्चुअल टूर जरूर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको फिर से बता दें कि आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और श्रोताओं, आज की तारीख में जो हमारे म्यूजियम्स हैं, कई म्यूजियम्स जो हैं, अब ऑनलाइन वर्चुअल टूर आपको कराने की सुविधा देते हैं। इससे लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर घर बैठे संग्रहालयों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा 3D मॉडल और

और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक जो है उसके माध्यम से प्राचीन वस्तुओं को जीवंत रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इससे दर्शकों को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वे इतिहास को अपने सामने घटित होते देख रहे हैं। श्रोताओं, अब संग्रहालयों में ऑडियो गाइड की सुविधा होती है जो विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से दर्शकों को अधिक रोचक और व्यक्तिगत अब अनुभव मिल रहा है। तकनीकी ने जब हाथ बढ़ाया, इतिहास ने एक नया रूप पाया। ज्ञान और नवाचार मिलकर संस्कृति का अब एक नया दीप जलाया। जी हाँ श्रोताओं, समय के साथ अब लोगों की रुचियां भी बदल रही हैं और नई पीढ़ी डिजिटल माध्यमों की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। ऐसे में संग्रहालयों को भी आधुनिक बनाना आवश्यक है। यदि संग्रहालय केवल पुरानी शैली में ही बने रहेंगे तो युवाओं की रुचि जो है वो कम हो सकती है। इसीलिए इंटरैक्टिव स्क्रीन, डिजिटल गेम्स और होलोग्राम और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां संग्रहालयों को अधिक आकर्षित बना रही हैं। नवाचार के माध्यम से संग्रहालय शिक्षा और मनोरंजन दोनों का अब केंद्र बनाए जा रहे हैं। डिजिटल संग्रहालय विद्यार्थियों के लिए सीखने का एक नया माध्यम बन गए हैं। वे इतिहास, विज्ञान और कला को अधिक सरल और रोचक तरीके से अब समझ पाते हैं। ऑनलाइन प्रदर्शनी और डिजिटल सामग्री के कारण दूर दराज के विद्यार्थी भी अब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा अधिक व्यापक और सुलभ बन रही है।

जी हाँ श्रोताओं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, लेकिन अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो हम अपने इतिहास को कैसे जान सकते हैं? जब तक कि हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पिछले इतिहास में हमारे देशवासियों के साथ या हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। लेकिन आज के समय में हम जो हमारे म्यूजियम्स हैं वो हमें हमारे अतीत की केवल यादें नहीं देते बल्कि वे हमें अतीत के बारे में शिक्षा भी देते हैं, उसके लिए अनुसंधान करने का मौका देते हैं और सांस्कृतिक संवाद के लिए एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण केंद्र है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमें यही संदेश देता है कि अब संग्रहालय केवल संग्रहालय नहीं है बल्कि एक अनुसंधान का जो है केंद्र बन चुके हैं। ये दिवस हमें लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनने और उसे सुरक्षित रखने की जो है प्रेरणा देता है। इतिहास की आवाज सुनाते, संस्कृति के दीप जलाते, संग्रहालय ज्ञान के सागर मानवता को राह दिखाते। तकनीकी जब संग में आती, हर धरोहर जीवंत बनाती, नवाचार के उजियाले से नई पीढ़ी मुस्कुराती। आओ मिलकर प्रण ये लें, विरासत का मान बढ़ाएं, संग्रहालयों की इस दुनिया को ज्ञान का मंदिर बनाएं। जी हाँ श्रोताओं, समय है कि अब हम सभी अब अपने म्यूजियम्स के प्रति जागरूक बने, अपने बच्चों को यहाँ का भ्रमण कराएं और उन्हें अपने इतिहास

0: से मिलवाएं और इतिहास के महत्व को उन्हें बताएं। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जहां हमने बहुत ही जरूरी और समसामयिक दो विषयों पर बात की, जहां एक था विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। मिलेंगे कल नए विषय के साथ, कुछ नए गीतों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
1: श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि

0: आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
1: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
3: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
3: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
4: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
3: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
5: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
5: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
5: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
5: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
5: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन

0: हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात्र वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को

0: उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800 44 0559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

एड्स वैक्सीन की जागरूकता फैलाएं, सुरक्षित जीवन का संदेश पहुंचाएं। जागरूक बनेगा हर इंसान, एड्स मुक्त होगा हिंदुस्तान। एड्स से लड़ाई है जारी, जागरूकता ही है सबसे बड़ी तैयारी। वैक्सीन पर शोध बढ़ाएं, एड्स के खतरे को घटाएं।

श्रोता भी सुन रहे थे एड्स विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर कुछ स्लोगन्स। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से केके की आवाज में ये नगमा, जिसमें संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

एड्स को हराना है, जागरूकता फैलाना है। डर नहीं, जानकारी जरूरी है, एड्स से बचाव ही समझदारी है।

तू जो मिला, इस नगमे को भी आप सुन रहे थे फिल्म बजरंगी भाईजान से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने का यह अगला गीत फिल्म शिरीन फरहाद से, श्रेया घोषाल की आवाज में, जिसमें संगीत निर्देशन है जीत कांगुली का और शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का यह अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शिवा से श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत निर्देशन है इलाया राजा का और शब्द रचना है नितिन रायकवार की।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: दे जरा। कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने में। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म टू स्टेट से अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय।

ओप्पो, इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से। और कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शॉर्टकट से। अपनी आवाजें दी है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

इस गीत को श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम नए तराने में फिल्म शॉर्टकट से श्रेया घोषाल और जावेद अली की आवाजों में, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर श्रोता सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। स्वीडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह मम्लकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में नए मुकर्रर करदा और तरक्की पाने वाले वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए। नए मुकर्रर करदा वज़रा में साबिक बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का महकमा सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खुराक और शहरी सप्लाई का महकमा दिया गया। अजीत पाल सिंह, जिन्हें काबीना में तौसी के दौरान वजीर ममलकत के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्हें फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को मिलिट्री वेलफेयर और सूबाई डिफेंस फोर्स के महकमे का चार्ज दिया गया है। चार नए मुकर्रर करदा वज़राए ममलकत को भी कलमदान दिए गए। कृष्णा पासवान को हैवानात और दूध की तरक्की का महकमा, सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू का महकमा, हंसराज विश्वकर्मा को छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत और कैलाश राजपूत को तवानाई और इजाफी तवानाई के जराए का महकमा सौंपा गया। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मुनक्कदा इंस्ट्रक्टर एजाजी तकरीब और चेक तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद तालीमी साल 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिया को 9,000 से 17,000 रुपये माहाना करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि एजाजिया में इजाफे के साथ साथ रियासती हुकूमत असातिज़ा को 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद जां बहक हो गए। जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदालीसपुर गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी जिले में पेश आने वाले सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मेरी ताज़ियत सोगवार खानदान के साथ है। वज़ीर-ए-आला ने मकामी इंतजामिया को जख्मियों और मुतासरीन को फौरी और मुनासिब इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश के शुमाल मशरकी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही जबरदस्त गर्मी और लू के मद्देनजर वज़ीर-ए-आला ने इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आला ने अस्पतालों में अदवियात, बेड और डॉक्टरों की दस्तियाबी को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ाल रखने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार। कार्यक्रम घर संसार में सभी बहनों और श्रोताओं का स्वागत है। सोनिका शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। जो चलते रहते हैं जीवन के पथ पर निरंतर, उनका सफर कभी अधूरा नहीं होता। और ये भी सच है, बिना संघर्ष सफर कभी पूरा नहीं होता। बहनों, अक्सर जीवन में चुनौतियां सबके सामने आती हैं, लेकिन जीवन की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें जीवन का संघर्ष अधिक होता है। ऐसे में आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता होती है और आवश्यक होता है कि निरंतर प्रयत्न करते रहना। आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है। एड्स एक गंभीर मुद्दा है। आइए इसे थोड़ा सरल रूप में समझेंगे और इसके लक्षण और रोकथाम पर भी बात करेंगे। एड्स एक गंभीर रोग है जिससे प्रभावित व्यक्ति में कई संक्रमण और जटिलताएं होने की संभावना रहती है। एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। जब HIV का संक्रमण लंबे समय तक शरीर में रहता है तो इससे एड्स रोग हो जाता है। HIV संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये मानव शरीर के तरल द्रवों में पाया जाता है। व्यक्ति के HIV संक्रमित होने के बाद एड्स होने में कुछ समय लगता है। HIV से संक्रमित होने के बाद तुरंत ही कोई लक्षण नज़र नहीं आते। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति सामान्य लगता है और स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन इस वायरस की वजह से CD सेल नष्ट होने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और अंत में व्यक्ति एड्स की गिरफ्त में आ जाता है। HIV के संक्रमण के बाद धीरे धीरे लक्षण विकसित होते हैं। जब व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसे अन्य जटिलताएँ जो होती हैं वो भी घेर लेती हैं। रोगग्रस्त होने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान, वजन का घटना, बार बार डिसेंट्री होना, बार बार बुखार आना, खांसी, बलगमों, कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं। TB रोग हो सकता है, गले में खराश, सूजन, सर दर्द और शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, घाव और इस तरह के कई संक्रमण के लक्षण शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। HIV एक ऐसा संक्रमण है जो समय पर इलाज और सावधानियों के द्वारा काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। HIV के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। HIV एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता इससे बचाव में उपयोगी है। कुछ सावधानियां अपनाकर HIV के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं, हमेशा सावधानी बरतें और ज़्यादा पार्टनर से बचें। इंजेक्शन, टैटू या एक्यूप्रेशर के लिए हमेशा नई और डिस्पोजेबल सुइयों का इस्तेमाल करें। कभी दूसरे की इस्तेमाल की हुई सुई का प्रयोग ना करें। अगर कभी खून चढ़वाने की ज़रूरत हो तो हमेशा प्रमाणित और सुरक्षित ब्लड बैंक से ही रख लें। HIV संक्रमित गर्भवती महिला को समय समय पर उचित चिकित्सा और दवाओं के जरिए इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। साथ ही याद रखें श्रोताओं, HIV वायरस हाथ मिलाने, गले लगाने, एक साथ खाना खाने, खांसने, छींकने और संक्रमित व्यक्ति के बर्तन छूने से नहीं फैलता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई। कार्यक्रम में आगे चलेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे हम ये सुंदर सा गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: बहनों, आज आपने सुनी सबसे पहले हमसे एड्स पर एक खास जानकारी, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब हम सुनाएंगे आपको एक खास वार्ता स्वावलंबन से भरता स्वाभिमान, जिसे पेश कर रही हैं सरोज शर्मा।
2: पराधीन सपने हूँ सुख नाही। संसार में किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना उसकी पहली शर्त है। स्वावलंबन के अभाव में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक

कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वावलंबन का महत्व समझने वाला व्यक्ति ही स्वाधीन रहकर दुख सुख का वास्तविक अर्थ समझ सकता है। भारत के महान राजा महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जंगलों में घूम घूम कर घास की रोटियां खाना तो स्वीकार किया, परंतु अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, क्योंकि जो सुख स्वाधीनता में है वह पराधीनता में नहीं मिल सकता है। स्वाधीन मनुष्य आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण उसके मन

वह पराधीनता में नहीं मिल सकता है। स्वाधीन मनुष्य आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण उसके मन में स्वाभिमान की भावना आती है। पराधीन मनुष्य तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला जाता है और अपना आत्मगौरव खो देता है। ईश्वर ने मनुष्य को कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सोचने के लिए मस्तिष्क और अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रदान की हैं। इन सब अंगों का मिलना यह दर्शाता है कि मनुष्य आत्मनिर्भर होकर पहले अपने को स्वावलंबी बनाए, फिर दूसरों पर शासन करना सीखे। घर बाहर सभी जगह समाज मानवीय सम्मान पाने के लिए व्यक्ति का कार्यरत या स्वावलंबी होना बहुत ही आवश्यक है। आज के जो उच्च एवं संपन्न परिवार माने जाते हैं, उनके बारे में यह सुना जाता है कि उनके पूर्वज घर से केवल कुछ सामान लेकर ही निकले थे, फिर बाहर पहुंचकर उन्होंने किसी भी प्रकार की मेहनत करने में संकोच नहीं किया, अपने बल पर आगे बढ़ते गए और एक दिन बड़े बड़े उद्योग धंधों के स्वामी बन गए। उनके कारण आज सैकड़ों हजारों परिवार भी आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की कहानियों में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन का अनुभव कहता है कि परिश्रम से व्यक्ति हो या देश, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो परिश्रम करके आगे बढ़ता है, उसे सम्मान प्राप्त होता है। बहुत समय पहले जापान के एक दार्शनिक ने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने हाथों की उंगलियों के बल पर सारे संसार को जीत लेंगे, और उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिखाया। स्वावलंबन का मतलब है आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भर होने का मतलब है अपने काम स्वयं करना, किसी भी वस्तु जरूरत के लिए किसी पर निर्भर न होना। आत्मनिर्भर होने से इंसान के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे दुनिया की किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए इंसान खुद अकेले खड़ा रह सकता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़े होकर स्वावलंबी बनो, ताकि तुम अपने साथ दूसरों की भी जिम्मेदारियां उठाने के लायक बन सको। स्वावलंबन की बात पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक किस्सा है कि उन्होंने एक बार व्यक्ति का सामान खुद उठाकर उसके कमरे में पहुंचाया। जब पता चला कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, तो वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। उसने पूछा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं तो दूसरों का सामान क्यों उठाते हैं। तब उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि जब ईश्वर ने हमें हाथ पैर सब दिए हैं, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने हाथों से किया गया कार्य हमें उन्नति की तरफ ले जाता है। जिस भी विषय का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। जो व्यक्ति मेहनत से अपना कार्य करता है, वह स्वाभिमान को प्राप्त करता है। अब स्वावलंबी बने कैसे? स्वावलंबी बनने की कोई सरल विधि नहीं है। अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने होते हैं जिनकी मदद से दुनिया आपको स्वावलंबी आत्मनिर्भर कहेगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा, जिससे पूरे समाज और देश में आपका नाम हो। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे वाले हों। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले पाते हैं। आप अपने अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। स्वावलंबी बनने के लिए आपको अपने ऊपर आश्रित होना होगा, न कि किसी और के ऊपर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, जिससे देश को अन्य देशों के सामने अपना सिर न झुकाना पड़े। भारत में सन 2007 वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया कि महिलाएं स्वयं को आत्मनिर्भर करके स्वाभिमानी होने का अनुभव कर सकें। आज जमाना बदल चुका है। लड़कियां, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां अपना लोहा नहीं मनवा रही हैं। महिलाएं शादी के बाद भी अपने घर, बच्चे और ऑफिस का काम बखूबी संभाल लेती हैं। महिलाओं के स्वावलंबी होने से उनमें आत्मविश्वास तो आता ही है, इसके साथ वे जीवन की हर लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार भी रहती हैं। स्वावलंबन स्त्री में स्वाभिमान पैदा करता है, और स्वाभिमान उन्हें चेतना से संपन्न करता है। यही चेतना उनकी सामर्थ्य का निर्माण करती है और उसे संगठित करने के लिए भी प्रेरित करती है। इसीलिए स्त्री सशक्तिकरण के लिए जरूरी है आर्थिक स्वावलंबन और स्वाभिमान। स्वावलंबन किसी भी महिला को पुरानी बेड़ियों से मुक्त करने का एक मजबूत आधार देता है। अक्सर औरतों को यह कहकर हीन भावना का शिकार बना दिया जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, आप कमाएं तो पता चले। उन्हें इस हद तक कमजोर बना दिया जाता है कि वे कोई भी निर्णय लेने में डरती हैं। समाज में कई बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली महिलाओं को

0: वो भी परंपरावादी सोच के चलते शोषण का शिकार होना पड़ता है। समाज में बदनामी के डर से स्त्रियां चुप रहती हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता अभी भी पुरुष प्रधान समाज से संचालित होती है। इसके लिए स्त्रियों में चेतना की दरकार है, ताकि उनकी अपनी मानसिकता भी बदले। यह मानसिकता स्वावलंबी होने पर आसानी से बदली जा सकती है। ऐसी चेतना आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा और संघर्ष से ही आ सकती है। स्वावलंबी होने के फायदे: व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन के फैसले व्यक्ति स्वयं लेता है, जिससे उसका मन प्रसन्न रहता है और समाज और देश का विकास होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के जरिए महान बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं। स्वावलंबी न होने के परिणाम: आत्मनिर्भर न होने के कारण व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है, जिससे वो अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं। स्वावलंबी होने से स्वाभिमान बढ़ता है और आत्मसम्मान भी। साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिबंधों को नकारने की क्षमता भी हासिल की जा सकती है। समाज की संकीर्ण परंपराओं से परे मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। इस पर श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता स्वावलंबन से भरता स्वाभिमान, और वार्ताकार थी सरोज शर्मा। कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी आपसे दोबारा मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बहनों, आप में से हर किसी ने ये गाना गाया होगा या गुनगुनाया होगा, लेकिन कभी सोचा है कि पानी पर सिर्फ मछली का नहीं, हम सभी का जीवन निर्भर है। पानी की इसी महत्ता के चलते उसे वेदों में स्थान दिया गया और उत्तर प्रदेश के बागपत में देश भर में जाने जाने वाले जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भी यही बात बहुत पहले समझ ली थी। जब वो बहुत छोटे थे तब से ही उनके मन में पानी को लेकर एक अजीब सा आकर्षण था। राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1979 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के धौला गांव में हुआ था। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने आयुर्विज्ञान में डिग्री ली और गांव में प्रैक्टिस करने लगे। वहां उन्होंने पानी की समस्या को और करीब से जाना और उन्हें लगा जब धरती पर जल ही नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, तो क्या स्वास्थ्य, क्या खेती, बिना पानी के पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, हरियाली, पर्यावरण भी तो स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इसके लिए उन्होंने उस इलाके को चुना जहां पानी की भारी समस्या थी। ये राजस्थान राज्य था। कहते हैं अपनी 1981 में अपनी शादी के बाद कुछ समय बाद उन्होंने घर का सारा सामान लगभग 23,000 रुपये में बेच दिया और पानी बचाने की लड़ाई में चल पड़े। राजेंद्र सिंह ने सोच लिया कि वो पानी की समस्या का कुछ ठोस हल ज़रूर निकालेंगे। उन्होंने 8,000 रुपये अपने बैंक में डालकर शेष पैसा इस काम में लगा दिया। ये 1980 का दशक था। अब उनके पास कुछ और लोग आके जुट गए। उन्होंने तरुण भारत संघ नाम के गैर सरकारी संगठन से जुड़कर काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बारिश के पानी को बचाने की सोची और कुछ गाँव वालों की मदद से छोटे छोटे पोखर बनाने शुरू किए। उनकी कोशिश थी कि अगर ये पोखर बारिश के पानी से भर जाएं, तो इनसे पानी की शुरुआती ज़रूरत तो पूरी होती, साथ ही धरती के नीचे जल का स्तर भी बढ़ जाता। शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो पानी बचाने की मुहिम में जुटे रहे। जोहड़ बनने लगे, पुराने जोहड़ तालाब की सिंचाई हुई, पानी बचाए जाने लगा। जवाब में रेगिस्तान में भी बारिश होने लगी, बंजर धरती लहलाने लगी। सिंह की अगुवाई में लगभग 7,000 से ज़्यादा जोहड़ बन चुके हैं। राजस्थान के 1,000 गांवों में अब पानी की कमी नहीं है। लोगों की मदद से उन्होंने 11,800 से ज़्यादा एनीकट और चेक डैम बनवाए हैं। फिर भी पानी से जुड़े इस अभियान में अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। श्रोताओं, दुनिया की

0: कुल आबादी में से लगभग 18% आबादी भारत में रहती है। आप जानते हैं लगभग 70% जनता प्रदूषित पानी पीती है। अगर अब भी पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो साल 2040 तक पीने का पानी बचेगा ही नहीं। ये सही है कि जल पुरुष राजेंद्र सिंह की मुहिम आज देश भर में फैल चुकी है। दुनिया भर में उनकी सराहना हुई और सम्मान मिले। पानी के क्षेत्र में नोबल के सम्मान के नाम से समझे जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिल चुका है। साल 2008 में गार्डियन ने उन्हें 50 ऐसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था जो इस धरती को बचा सकते हैं। जाहिर है इस धरती पर जल और जीवन को बचाने वाले अभियान को आप सभी की ज़रूरत है। आशा करते हैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह के विषय में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अब हम सुनते हैं ये सुंदर सा नगमा।
1: बल्ली कित्थे है?

बहनों, चेहरे पर ब्लैक हेड्स चांद पर दाग की तरह होते हैं। लड़कियां हो या लड़के, अक्सर नाक के आसपास के हिस्सों पर ब्लैक हेड्स परेशान करते हैं। ये ब्लैक हेड्स तब होते हैं जब हमारी त्वचा के पोर्स में गंदगी के साथ ऑयल जमा हो जाता है। यही ऑयल और गंदगी काले धब्बे के रूप में दिखाई देती है। ब्लैक हेड्स की वजह से चेहरा काफ़ी ख़राब दिखने लगता है। नियमित रूप से चेहरे को अच्छी क्लिंजिंग करने से ब्लैक हेड्स से बचा जा सकता है। चेहरे पर से ब्लैक हेड्स हटाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, इन्हीं में से एक ट्रिक है कि चेहरे पर स्टीम यानी भाप लेना। दरअसल स्टीम से त्वचा के पोर्स खुल जाते हैं, लेकिन क्या वाकई इससे आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स दूर हो जाएंगे? अगर कहा जाए कि स्टीम लेने से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकल जाते हैं, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल जब आप चेहरे पर भाप लेते हैं तो त्वचा के पोर्स खुलते हैं और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन

फाउंडेशन अच्छा होता है और स्किन हाइड्रेट होती है। इसके बाद ब्लैक हेड्स निकालने के लिए त्वचा की क्लिंजिंग करनी चाहिए। नम त्वचा पर आसानी से ब्लैक और वाइट हेड्स हटाए जा सकते हैं। घर पर ब्लैक हेड्स निकालने के लिए स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश लेकर सबसे पहले चेहरा साफ करें। इसके बाद स्क्रबर से सर्कुलर मोशन में मसाज करें जहाँ तक ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं। फिर स्क्रब करें और चेहरे पर स्टीम लें। इसके बाद हल्के हाथ से मसाज करें। ब्लैक हेड्स क्लीन करने के बाद चेहरे पर मास्क अप्लाई कर लें। फिर 10-15 मिनट बाद मास्क हटा दें और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन के अनुसार हो उसे चेहरे पर लगा लें। साथ ही श्रोताओं, इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में ही कभी क्लीन करने की कोशिश नहीं करें, वरना आपकी त्वचा पर रैशेज़ हो सकते हैं। ब्लैक हेड्स निकालने के लिए किसी टूल का यूज़ बहुत ध्यान से करें और ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए स्क्रब से बहुत तेज़ी से अपनी त्वचा को ना रगड़ें। आशा करते हैं आपको ये जानकारी ब्लैक हेड्स पर पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं और इसके साथ ही मुझे यानी सोनिका शर्मा को इजाजत दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार आशा भोसले के गाए हुए कुछ चयनित गीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह पहला गीत जिसके बोल हैं, कोई दिया जले कहीं।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में आशा भोसले के गाए हुए कुछ चयनित गीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम में ये अगला गीत जिसके बोल हैं जाने दो मुझे।

श्रोता समय सुन रहे हैं कलाकार आशा भोसले के गाए हुए कुछ चयनित गीत और कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत जिसके बोल हैं ए जिंदगी।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुनी कलाकार आशा भोसले द्वारा गाए हुए कुछ चयनित गीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज, और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया मिड डे न्यूज की प्रतीक्षा करें।

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें

0: कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक

0: अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए।

0: में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार अकील अहमद खान द्वारा राग भैरवी में गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार अकील अहमद खान द्वारा राग भैरवी में गायन, और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का और शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। इस नगमे को भी आप सुन रहे थे फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म काला पानी से मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत निर्देशन है आर डी वर्मन का और शब्द रचना है मजरूह की।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से 1530 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे जिसमें संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का और जिसे शब्दों से सजाया है राजेंद्र जयकिशन ने। आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है धरती।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म हंसते जख्म से इस नगमे को श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म झूठ बोले कौवा काटे से ये गीत, जिसमें अपनी आवाज दी है उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म पापा कहते हैं से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म मोहब्बत से कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत निर्देशन है संजीव दर्शन का और शब्द रचना है समीर की।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म मोहब्बत से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी थी कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने। श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है मृत्युदंड। संगीत निर्देशन है आनंद मिलिन का और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। और इसी के साथ इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओ, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद

0: समाधान एडीआर से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई यूडीएफ सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे करेंगे चर्चा जिसका विषय होगा एड्स है जानलेवा। इतिहास के पन्नों से जानेंगे प्रेह विहार मंदिर के बारे में। इसके अलावा सुनेगा वार्ता साझा सांस्कृतिक विरासत है हमारी साझी जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगी सोनी चौधरी। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक 6 बजे। इसमें आज चर्चा का विषय है गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य। अन्य चर्चाएं होगी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर और सुनाएंगे हम आपको भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में आंखों की देखभाल विषय पर डॉक्टर वाणी अग्रवाल से जिनसे बातचीत करेंगे राम सेवक। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मंडी फाव की मौसम की और सुनवाए जाएंगे लोकगीत।

श्रोताओं, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इसी उपलक्ष्य पर हम आपको सुनाएंगे वार्ता। जीवंत सांस्कृतिक संवाद के केंद्र हैं हमारे संग्रहालय। वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह।

कार्यक्रम मजदूर मंडल आप सुनेंगे 6:30 पर। इसमें चर्चा होगी पेड़ लगाओ धरा बचाओ विषय पर। सेहत से जानकारी दी जाएगी कार्यक्रम सेहतनामा में। और आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों से चंद गजलें, प्रोग्राम शामी गजल में। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। रात्रि 10 बजे सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत करता होंगे अनिंद्र सिंह।

श्रोताओ, ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदना, 6:25 पर चिंतन में सुनेगा ईश्वर चंद विद्यासागर के विचार। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 6:35 पर। खेती की बात है कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर विनय सिंह की वार्ता का विषय रहेगा गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा घुटने का दर्द और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर राकेश मोहनिया से बातचीत करेंगे नीरज जैन और इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 7:10 पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास सुनेगा 7:31 पर। 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे हरिओम सिंह सिकरवार के गाए ब्रिज लोक गीत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं, सुनते हैं भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

0: श्रोताओं, अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में ये था फिल्म केदारनाथ का भक्ति गीत।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये आवाजें थीं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म थी कुंवारा बाप, शब्द रचना थी मजरूह की, संगीत था राजेश रोशन का। आइए अब सुनते हैं यसुदास की आवाज में फिल्म अपने पराए से ये भक्ति गीत।

श्रोताओ, मन्नाडे के गाए फिल्म चंदा और बिजली के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना दोस्तों, कभी खुशियों की धूप खिलाती है तो कभी परेशानियों की छांव में बैठकर बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है हमारी सेहत, हमारी समझ और हमारा जागरूक होना, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन जाती है और कई बार सही जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। कुछ बातें सिर्फ बीमारी नहीं होती बल्कि समाज की चुप्पी और गलत फहमियों का शिकार बन जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी समस्या से बचने का सबसे पहला कदम है सही जानकारी और जागरूकता, क्योंकि जब हम किसी विषय पर बात करना शुरू करते हैं तभी डर कम होता है और समझ बढ़ती है। और आज का दिन भी हमें यही संदेश देता है कि जागरूकता, सावधानी और संवेदनशीलता कितनी ज़रूरी है। इसी सोच के साथ आज युववाणी में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय पर जो सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि समाज की सोच से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं। लेकिन सच तो ये है कि चुप्पी नहीं, जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एड्स के बारे में। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मुझसे तो मिल लीजिए, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोशनी शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज यानी 18 मई को पूरे विश्व में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों को एड्स HIV के प्रति जागरूक किया जा सके और वैक्सीन

0: रिसर्च के महत्व को समझाया जा सके। दोस्तों एड्स यानी एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है इसके बारे में फैली गलत फहमियाँ। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों ये बीमारी HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। ये वायरस हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, जिससे शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में भी असमर्थ होने लगता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात पता है क्या, कि HIV और एड्स एक ही चीज़ नहीं है। HIV एक वायरस है, और जब ये लंबे समय तक शरीर को कमज़ोर करता रहता है तब जाकर एड्स की स्थिति बनती है। आज भी समाज में बहुत लोग HIV संक्रमित लोगों से दूरी बनाते हैं, उन्हें अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि HIV छूने से, साथ बैठने से, खाना खाने से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। HIV फैलने के मुख्य कारण तो कुछ और ही हैं दोस्तों, जैसे कि संक्रमित सुई का इस्तेमाल, असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाना या संक्रमित माँ से बच्चे में संक्रमण। इसलिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना होगा कि जानकारी ही सुरक्षा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी बातें हमसे दूर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जागरूकता हर किसी के लिए ज़रूरी है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार HIV की वैक्सीन और बेहतर इलाज की खोज में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन नहीं बन सकी, लेकिन इलाज और दवाओं की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति लंबा और सामान्य जीवन जी सकता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि अगर समय पर जांच हो जाए और सही इलाज शुरू हो जाए तो HIV को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है डर नहीं, समझ, भेदभाव नहीं, अपनापन। सोचिए अगर कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होगी? दवाइयों की, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमारे साथ की, हमारे समर्थन की, हमारी इंसानियत की। कई लोग सिर्फ समाज के डर से अपनी जांच तक नहीं करवाते, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों बीमारी छुपाने से नहीं, समझदारी से कदम उठाने से ज़िंदगी बचती है। आज युवाओं को समझना होगा कि जिम्मेदार व्यवहार ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। हमें खुद भी जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। स्कूल, कॉलेज, परिवार और समाज, हर जगह इस विषय पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बातचीत ही नहीं होगी तब तक भ्रम खत्म कैसे होगा। और याद रखिए दोस्तों, HIV से लड़ाई सिर्फ दवाइयों की ही नहीं है, ये लड़ाई है डर, भेदभाव और अज्ञानता के खिलाफ। अगर हम किसी एक इंसान को भी सही जानकारी दे पाएं, अगर हम किसी एक व्यक्ति को जांच करवाने के लिए प्रेरित कर पाएं, अगर हम किसी एक HIV संक्रमित व्यक्ति का मनोबल बढ़ा पाएं, तो समझिए आज का हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। तो दोस्तों जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है और हर जिंदगी सम्मान की हकदार भी। तो जब बात जागरूकता की हो रही है तो दोस्तों आज का दिन एक और खास वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि 18 मई को और कौन सा खास अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद तक। कहीं बन सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, क्योंकि इस सवाल का उत्तर हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों बस एक सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है कि क्या हमारी पहचान

0: सिर्फ हमारे नाम और हमारे शहर से है? मैं मानती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी विरासत हमें खास बनाती है। वो विरासत जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। आज जब हम जागरूकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं सोनी चौधरी, जो बात करेंगी साझा सांस्कृतिक विरासत है हमारी साझी जिम्मेदारी। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभालना आखिर क्यों हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: मनुष्य और अन्य जीवों के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल बुद्धि का नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है उसकी कल्पना, उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह केवल संसार में रहता नहीं बल्कि संसार को अर्थ देता है। जब प्रारंभिक मानव ने पहली बार पत्थर को औजार बनाया, तब वह केवल शिकार करना नहीं सीख रहा था, वह प्रकृति पर अपनी चेतना की छाप छोड़ रहा था। जब उसने पहली बार किसी गुफा की दीवार पर चित्र बनाया, तब वह केवल रंग नहीं भर रहा था, वह समय को चुनौती दे रहा था। वह कह रहा था, मैं यहाँ था, मैंने महसूस किया, मैंने सौंदर्य को जाना। यही वह क्षण था जहाँ से संस्कृति का जन्म हुआ। सभ्यता केवल ईंटों और सड़कों का नाम नहीं है, सभ्यता वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठकर अर्थ, सौंदर्य और स्मृति का निर्माण करता है। युवल नोआ हरारी अपनी पुस्तक सेपियंस में लिखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी काल्पनिक वास्तविकताओं, इमेजिन रियलिटीज को गढ़ने की क्षमता थी। धर्म, राष्ट्र, परंपराएं, मिथक, कला, संस्कृति, ये सब मनुष्य की सामूहिक कल्पना की उपज है और यही कल्पना लाखों अनजान लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसीलिए संस्कृति केवल मनोरंजन नहीं है, ये मानवता की सामूहिक स्मृति है। जब हम किसी प्राचीन मिट्टी के बर्तन को देखते हैं, तो हम केवल मिट्टी नहीं देखते, हम उस मनुष्य को देखते हैं जिसने हजारों वर्ष पहले उसे अपने हाथों से बनाया था। हम उसकी सौंदर्य दृष्टि को देखते हैं, हम उसके जीवन की लय को देखते हैं, हम उसकी आकांक्षाओं को देखते हैं। इसीलिए इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा का अभिलेख है। गंगा यमुना क्षेत्र में प्राप्त पेंटेड ग्रे वेयर्स हो या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सिंधु घाटी की मनकों की कला हो या धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली या चोल साम्राज्य के कांस्य शिल्प, ये सब हमें बताते हैं कि मनुष्य केवल जीना नहीं जानता था, वह चाहता था कि वह सुंदर जीवन जिए। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये केवल पुरातात्विक स्थल नहीं है, ये प्रमाण है कि हजारों वर्ष पहले भी इस धरती पर अत्यंत विकसित समाज मौजूद था। जब दुनिया के कई हिस्से अभी बस्तियां बना रहे थे, तब सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर बस चुके थे। सीधी काटती हुई सड़कें, पकी ईंटों के मकान, ढकी हुई नालियां, उन्नत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार। आज भी मोहनजोदारो की जल निकासी प्रणाली को देखकर आधुनिक इंजीनियर आश्चर्य करते हैं। इतना ही नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण बनाना भी जानते थे, वे मनकों की कला जानते थे, वे सीप, तांबा और कांस्य से चूड़ियां बनाते थे। उनकी बनाई हुई चूड़ियां आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित परंपरा की तरह दिखाई देती हैं। यानी हमारी संस्कृति केवल किताबों में नहीं है, वह हमारी कलाइयों में भी है, हमारे त्योहारों में है, हमारे वस्त्रों में है, हमारी भाषा में है, हमारी स्मृतियों में है। समय आगे बढ़ता गया, सभ्यताएं बदलती गईं, राज्य बने, टूटे, फिर बने। कभी मनुष्य की पहचान उसके कबीले से होती थी, फिर उसकी पहचान उसके राज्य और साम्राज्य से होने लगी। लोग गर्व से कहते थे, हम मगध से हैं, हम मेवाड़ से हैं, हम विजयनगर से हैं, हम मराठा साम्राज्य से हैं। लेकिन आधुनिक युग में राष्ट्र, राज्य और लोकतंत्र के उदय के साथ पहचान का स्वरूप बदल गया। अब मनुष्य स्वयं को राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखने लगा और तब ये समझ विकसित हुई कि राष्ट्र की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी है वे हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही कारण है कि हमारी विरासत भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। विरासत केवल इमारतें नहीं होती, विरासत तीन प्रकार की होती है। पहली, मूर्त विरासत यानी टेंजिबल हेरिटेज, जैसे किले, मंदिर, मस्जिद, स्मारक, मूर्तियां, पांडुलिपियां। दूसरी, अमूर्त विरासत यानी इनटेंजिबल हेरिटेज, जैसे संगीत, लोक नृत्य, भाषा, परंपराएं, भोजन, त्योहार, लोक कथाएं। तीसरी, प्राकृतिक विरासत यानी नेचुरल हेरिटेज, जैसे जंगल, नदियां, पर्वत, जैव विविधता और दुर्लभ प्रजातियां। इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विदेशों में लोग अपनी विरासतों को कितनी गंभीरता से सुरक्षित करते हैं। इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज आज भी हजारों वर्ष के बाद सुरक्षित है। मध्यकालीन यूरोप के चर्च और महल आज भी उत्कृष्ट अवस्था में संरक्षित हैं। क्यों?

0: क्योंकि वे समझते हैं कि विरासत केवल अतीत नहीं होती, वह भविष्य की पूंजी होती है। विरासत राष्ट्र को केवल गौरव नहीं प्रदान करती, बल्कि आजीविका भी देती है। पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। होटल, गाइड, हस्तशिल्प, परिवहन, स्थानीय बाजार सब इससे जुड़े होते हैं। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, वह भारत की पहचान है। वह लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। हर वर्ष दुनिया भर से आने वाले पर्यटक भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, तब अंग्रेज बार बार कहते थे कि भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जब अशोक के अभिलेख पढ़े गए, जब नालंदा, तक्षशिला और अजंता एलोरा की चर्चा हुई, तब भारतीयों को अपने अतीत का बोध हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी पिछड़े राष्ट्र के लोग नहीं हैं, वे उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने हजारों वर्ष पहले नगर बसाए थे। यही इतिहास उनके आत्मविश्वास का स्रोत बना, यही विरासत उनके संघर्षों की शक्ति बनी। इसीलिए विरासत केवल पत्थर नहीं होती, वह आत्मसम्मान होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विरासत किसी एक धर्म या समुदाय की निजी संपत्ति नहीं होती। यदि कोई मस्जिद है तो उसकी रक्षा केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई मंदिर है तो वह केवल हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई गुरुद्वारा है तो वह केवल सिखों का दायित्व नहीं है, वह पूरे राष्ट्र की धरोहर है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर विरासत को बचाया। मुगल सम्राट अकबर के समय संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। महाभारत का रज्मनामा संस्करण तैयार हुआ। रामायण व उपनिषदों का भी अनुवाद कराया गया। सुंदर चित्रों से उन्हें सजाया गया। यदि ये कार्य ना हुआ होता तो संभव है कि समय की धूल में बहुत कुछ खो जाता। एक और अद्भुत उदाहरण है सांची स्तूप। आज सांची विश्व धरोहर है, दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं। हम उसे बौद्ध स्थापत्य कला के महानतम उदाहरणों में गिनते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सांची उपेक्षा, जंगलों और समय की धूल में खो चुका था। यदि उस समय संरक्षण का प्रयास ना हुआ होता तो संभव है कि आज सांची केवल इतिहास की किताबों में एक खोई हुई स्मृति बनकर रह जाता। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, भोपाल की शाहजहां बेगम। उन्होंने केवल एक शासक की तरह नहीं बल्कि एक संरक्षक की तरह कार्य किया। उन्होंने सांची के संरक्षण में आर्थिक सहायता दी, उसके पुनरुद्धार के प्रयासों को समर्थन दिया और सुनिश्चित किया कि ये अद्भुत धरोहर विनाश से बच सके। कल्पना कीजिए, यदि वह संरक्षण ना हुआ होता, यदि वह संवेदनशीलता ना दिखाई गई होती, तो आज हम सांची के उन अद्भुत तोरण द्वारों को ना देख पाते, हम बुद्ध की उस स्थापत्य परंपरा को ना समझ पाते, हम भारतीय इतिहास के उस अध्याय से वंचित रह जाते जो पूरी मानवता की धरोहर है। कई बार इतिहास युद्धों से नहीं बचता, वह बचता है कुछ लोगों की करुणा, दृष्टि और जिम्मेदारी से। और यही इस विषय का सबसे बड़ा संदेश है। विरासत को बचाने के लिए केवल सरकारें पर्याप्त नहीं होती, उसे बचाने के लिए समाज की चेतना चाहिए। अंततः प्रश्न केवल यह नहीं है कि हम अपनी विरासतों को बचाएंगे या नहीं, वास्तविक प्रश्न ये है कि क्या हम स्वयं को याद रखना चाहते हैं या नहीं। स्मारकों को उसी तरह सुरक्षित रखिए जैसे आप अपनी सबसे मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये केवल पत्थर नहीं है, ये राष्ट्र का आभूषण है। आज GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसी उद्देश्य के साथ दिए जाते हैं, ताकि स्थानीय कला और परंपराओं की पहचान सुरक्षित रह सके। कोलापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, कांचीपुरम सिल्क, दार्जिलिंग टी, ये केवल उत्पाद नहीं है, ये सदियों की परंपरा, कौशल और पहचान है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भारतीय कला की नकल बिना श्रेय के दी जाती है तब हमें दुख होता है, क्योंकि संस्कृति केवल वस्तु नहीं होती, वह पहचान होती है, वह सम्मान होती है। जब आप किसी प्राचीन स्मारक के सामने खड़े हों तो केवल पर्यटक बनकर मत खड़े रहिए, कुछ क्षण रुकिए, पत्थरों को देखिए, वे मौन हैं लेकिन वे बोलते हैं। वे बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य प्रेम करता था, सौंदर्य रचता था, प्रार्थनाएं करता था, सपने देखता था। और तभी समझ आता है कि विरासत केवल अतीत का अवशेष नहीं है, वे मनुष्य होने का प्रमाण है। इसलिए आइए हम अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को केवल हेरिटेज कहकर ना छोड़ें, उसे अपनी जिम्मेदारी बनाएं, उसे अपने व्यवहार में उतारें, स्मारकों को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, भाषाओं को बचाएं, कलाओं को बचाएं, क्योंकि साझा सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं, मानवता की जीवित आत्मा है और उसकी रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी।
1: दोस्तों, उम्मीद है सोनी चौधरी की इस बातचीत ने आपको अपनी संस्कृति,

0: अपनी परंपराओं और अपनी धरोहरों के महत्व को एक नए नजरिए से समझने का अवसर दिया होगा। दोस्तों, हमारी विरासत सिर्फ किताबों में लिखी कहानियां नहीं होती, ये वो एहसास हैं जो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ते हैं। कभी किसी पुराने किले की दीवारें इतिहास सुनाती हैं, तो कभी किसी मंदिर की घंटियां मन को शांति का एहसास कराती हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ आस्था और संस्कृति एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। यहाँ हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर मिल जाती है जहाँ जाकर मन ठहर सा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत की संस्कृति सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की बात करते हैं, तो ऐसे धार्मिक स्थल भी याद आते हैं जो भारत के बाहर स्थित होने के बावजूद भारत की संस्कृति को विशाल रूप से दर्शाते हैं, जो सिर्फ पूजा का स्थान ना होकर बल्कि लोगों की भावनाओं, विश्वास और संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी एक जगह है प्रह विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अपने शांत वातावरण और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। जब भी हम मंदिर शब्द सुनते हैं, तो मन में एक अलग सी शांति उतर आती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान थक जाता है, तो वह कुछ पल सुकून के तलाशता है, और शायद यही कारण है कि लोग ऐसे धार्मिक स्थलों की ओर खिंचे चले आते हैं। दोस्तों, प्रह विहार मंदिर भी लोगों के बीच अपनी विशेष पहचान रखता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक माना जाता है कि जो भी यहाँ आता है, वह खुद को भीतर से हल्का और शांत महसूस करता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों को बेहद आकर्षित करती है। सुबह और शाम के समय यहाँ होने वाली आरती का दृश्य श्रद्धालुओं के मन को भक्ति से भर देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता। ये हमें हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में भी हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी यही ज़रूरी है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के महत्व को समझें, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को जानेंगे, तभी उसे आने वाली पीढ़ियों तक सहेज पाएंगे। तो दोस्तों, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो या मंदिर, ये सब हमारी पहचान का हिस्सा है। इन्हें संभालना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और ले चलते हैं आपको संगीत के सुकून में।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, करते थे जैसा ना किसी ने किया।

दोस्तों, इस गाने ने हमें एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में सपने तो हर कोई देखता है। कोई अपने पैरों पे खड़े होना चाहता है, कोई अपने हुनर को पहचान दिलाना चाहता है, तो कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी बेहतर बन सके। लेकिन कई बार सपनों और हकीकत के बीच सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है अवसर। सही मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग और आत्मविश्वास की कमी के कारण बहुत से युवा अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। हालांकि आज समय बदल रहा है। अब युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने के लिए नहीं बल्कि खुद रोजगार पैदा करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सरकार और कई संस्थान ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सके और अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज का युवा सिर्फ अपने सपने देखना नहीं चाहता बल्कि उन्हें सच करने का हौसला भी रखता है, और जब मेहनत के साथ सही सहयोग मिल जाए तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है। इसी सोच को और मजबूत करने के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों, ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई जो अपना छोटा व्यवसाय या उद्योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक सहायता की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस योजना के तहत सरकार युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। दोस्तों, इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं बल्कि लोगों को रोजगार देने योग्य बनाना भी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे गांव और शहर दोनों जगह के युवाओं को अपने हुनर को पहचान दिलाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने छोटी सी शुरुआत करके अपने सपनों को नई उड़ान दी है। किसी ने सिलाई का काम शुरू किया, किसी ने फूड बिजनेस, तो किसी ने हस्तशिल्प और लोक कला के रोजगार का माध्यम बनाया। सबसे खास बात यह है कि ये योजना आत्मनिर्भर भारत की सोच

को भी मजबूत करती है, क्योंकि जब युवा खुद आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। आज ज़रूरत है युवा अपनी क्षमता को पहचाने, नई सोच रखे और अवसरों को सही इस्तेमाल करे, क्योंकि सफलता सिर्फ बड़े संसाधनों से नहीं मिलती बल्कि बड़े इरादों से भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, कोई सपना है, तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अब आ गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के साथ साथ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। दोस्तों, संग्रहालय सिर्फ पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखने की जगह नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास और विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक खूबसूरत माध्यम है। और आज के पूरे कार्यक्रम में हम सभी ने महसूस किया कि चाहे बात स्वास्थ्य की हो, संस्कृति की या रोजगार की, हर क्षेत्र में सही जानकारी और जागरूकता बेहद ज़रूरी है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ अब मुझे, यानी अपनी दोस्त रोशनी शर्मा को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। अपने श्रोता कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

0: ग्राम्य लोक कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को ऋतुजा का नाम नमस्कार। मित्रों, शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन अब भी सूरज के तेवर तीखे हैं और दोपहर में तो पारा 45-47 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो भैया, सबसे पहले तो तेज धूप में बाहर निकलने से परहेज कीजिए, और अगर निकलना ही पड़े तो टोपी, छाता, गमछा लेकर निकलिए। साथ में अपने देसी उपाय भी अपनाइए, जैसे कि जेब में प्याज रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी में शिकंजी पीते रहिए, और आमपना, सत्तू, छाछ जैसी ठंडी तासीर की चीज़ों को अपने खान पान में शामिल करिए। और हाँ, गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो जितना संभव हो ताज़ा और घर का बना हल्का और कम मसालेदार भोजन का ही सेवन करिए। इसके साथ ही हल्के रंग और ढीले सूती कपड़े ही पहनिए, जिससे कि पसीना जल्दी सूख जाए, वरना इन दिनों त्वचा रोग, एलर्जी होने की संभावना बहुत है। साथ ही गर्मी के मौसम में आँखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, इसलिए बाहर निकलते समय धूप का चश्मा लेने से थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही ठंडे ठंडे पानी से आंखें जरूर धोते रहिए, और फिर अगर जलन, खुजली जैसी समस्या महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लीजिए। नहीं तो कभी कभी छोटी छोटी समस्या भी बड़ा रोक ले लेती। तो भैया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज राम सेवक ने बातचीत की डॉक्टर वानी अग्रवाल से, तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में आँखों की देखभाल।
1: जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही गर्मी, ऐसे में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं और चिकित्सकों के पास हम लोग जाकर के अपने उपचार की बात करते हैं।

0: आज हम चर्चा करेंगे कि इस समय गर्मी के मौसम में आंखों में आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है। और प्रायः ये भी देखा गया है कि जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो युवा साथी अक्सर जो है आंखों पर काला चश्मा लगाने की होड़ जैसी कर लेते हैं और जगह जगह से जहां भी उन्होंने दिखाई दिया और उस चश्मे को लगा करके वो अपने को ऐसा महसूस करते हैं कि हम इससे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या ये सही है? इसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह से गर्मी के मौसम में कौन कौन सी इस समय बीमारियां हो सकती हैं और कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अग्रवाल जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आइए चर्चा करें वाणी जी से। तो डॉक्टर वाणी आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: शुक्रिया।
0: तो गर्मी के मौसम में बताएं कि इस समय कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आंखों में।
1: गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि आंखों में ज्यादातर जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं
0: जी,
1: आंखों में जलन होना, आंखों में पानी आना या संक्रामक रोग होना, आंखें चिपचिपाहट महसूस होना
0: जी,
1: उन्हें ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में कुछ कूड़ा सा पड़ गया हो। ये आंखों में सूखेपन की वजह से ज्यादातर होता है। ये ज्यादा गर्मी में रहने से, बाहर निकलने से, धूप के असर से, तेज हवा के चलने से
0: जी,
1: या फिर आजकल देखा गया एसी एटमोसफेयर में, जो लोग एसी में भी रहते हैं उनमें भी ये परेशानियां देखने में आती हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जो वातावरण है वो नमी से रहित हो जाता है, एक तरह से नमी की कमी हो जाती है
0: जी,
1: तो तेज गर्मी पड़ने से ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे आपने एसी की बात की, तो क्या एसी में रहने वाले लोग जब वातावरण में बाहर निकलते हैं तो उनको भी आंख में बीमारी हो सकती है?
1: बीमारी क्यों नहीं हो सकती है, गर्मी तो सभी के लिए है।
0: हाँ,
1: बल्कि उन लोगों में शायद टॉलरेंस पावर और कम होगी,
0: सहन करने की क्षमता
1: और कम होगी
0: जी,
1: तो उन लोगों को शायद ये परेशानी ज्यादा महसूस होती है
0: जी।
1: और पर यह है कि ये लोग कुछ सतर्क भी ज्यादा होते हैं, जो अच्छे ऊपर के अच्छे स्टेटस के लोग हैं
0: जी,
1: तो ये लोग अपनी आंख का बचाव जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो किसान भाई हैं जिन्हें खेतों में काम करना है उनके लिए परेशानी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि उन्हें धूल मिट्टी का, धूप का, तेज हवा का, इन सब चीजों का सामना ज्यादा करना पड़ता है।
0: तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से इन बीमारियों से बचें?
1: एक तो किसान भाई अपना सिर ढक के रखें
0: जी,
1: चौड़ी टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आंखों के ऊपर सीधी धूप का असर कम से कम पड़े। आंख में कुछ पड़ जाए तो आंख को रगड़े नहीं, साफ पानी से आंख को धो लें दिन में 2-3 दफा। हो सके तो एक धूप के चश्मे का प्रयोग करें
0: जी,
1: ताकि जो प्यार बैंगनी किरणें हैं, धूल मिट्टी है, गर्मी है, उसका असर आंख के ऊपर कम से कम हो।
0: अच्छा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आंख में, जैसे किसान भाई कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आंख में पड़ गया, कूड़ा पड़ गया, तो कुछ अपने आप ही चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि आंख को रगड़े नहीं। जहां आपने आंख को रगड़ा तो जो भी आंख में चीज पड़ी हुई है वो आपके आंख के पर्दे को छील देगी
0: जी,
1: जिससे कि आंख में जख्म बनने के डर रहता है और उसके बाद फिर आंख की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। पलक को झपक लें, कुदरत ने हमारे को पलकें इसीलिए दी हैं कि आंख को वो साफ कर सकें। दूसरा, आंख को साफ पानी से धो लें, जहां तक होगा ये जो कूड़ा या कचरा आंख में पड़ा है वो निकल ही जाएगा। फिर भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ परेशानी है तो फिर नेत्र चिकित्सक की राय लेना जरूरी है
0: जी।
1: आपने आप उपचार करने का या अपने आप उसको निकालने की ज्यादा कोशिश ना करें।
0: डॉक्टर साहब, क्या आंखों पर जो असर हो रहा है, वैसे तो स्वास्थ्य पर पर्यावरण का असर पड़ता ही है, क्या पर्यावरण प्रदूषित जो हो रहा है उसका आंखों पर भी कोई असर पड़ता है?
1: उसका आंखों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे धूप में निकलते हैं, तेज धूप है
0: जी,
1: खेलते हैं धूप में, पहले तो सिर्फ धूप का ही सामना करना पड़ता था, आजकल इन बच्चों को एक तरह से धुएं का, धूल मिट्टी का, गंदी पॉल्यूशन एक तरह से कहेंगे, जो ये गाड़ियां चल रही हैं, धुआं मिट्टी उड़ा रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, इन सब का भी असर आंख के ऊपर पड़ रहा है। जो बीमारियां हम आजकल बड़े बड़े लोगों में देखते थे पहले 40-50 साल की उम्र पे जाके, वो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी, आंख में जलन होना, आंख लाल हो जाना, एलर्जी होना, ये सब चीजें प्राय बच्चों में देखने में ज्यादा मिल रही हैं। पहले, आज से 15-20 साल पहले शायद ये बीमारियां बच्चों में इतने ज्यादा गंभीर रूप नहीं लेती थी।
0: तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, इससे कैसे बचा जाए?
1: ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर्यावरण में जो परेशानियां हैं वो तो चली रही हैं
0: जी,
1: बच्चों को धूप में ज्यादा बाहर नहीं निकालें, नहीं तो बच्चों के लिए भी आप एक धूप का चश्मा ले सकते हैं
0: जी,
1: वो जब साइकिल चलाते हैं या स्कूल से आते जाते हैं, रास्ते में ऑटो में जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, तो उस समय वो उसका इस्तेमाल कर लें। बस ये ध्यान रखें कि वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी दुकान से खरीदें ताकि बच्चे का उस काले चश्मे का गलत असर आंखों के ऊपर ना पड़े।
0: अच्छा, क्या डॉक्टर साहब आंखों के रोगों से कहीं खानपान का भी कोई

0: संबंध है कि अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो उस व्यक्ति को या बच्चे को या महिला को आंखों के रोग ज्यादा सताएंगे?
1: देखिए, खान पान का असर तो शायद शरीर के हर हिस्से पर ही पड़ता है। खान पान अच्छा होगा तो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे में ज्यादा होगी, खासकर गांव के बच्चों में, जहां पर शायद पोषण की थोड़ी कमी रह जाती है।
0: जी
1: माँ खेतों में काम करने चली जाती है, पीछे से बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है, या कई बार उन्हें बच्चे को अपने साथ लेके तेज धूप में खेत में ही जाना पड़ता है, टाइम से दूध नहीं पिला पाती हैं। तो
0: जी
1: इन बच्चों में विटामिन ए की कमी बहुत हो जाती है।
0: अच्छा
1: विटामिन ए की कमी से आंखें सूख सी जाती हैं और उनमें जख्म बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो खान पीन का असर तो मेरा ख्याल पड़ेगा ही। जैसे गांव में देखा, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, तो अक्सर हमने देखा बच्चे को जो ऊपर का दूध दिया जाता है तो उसमें वो लोग पानी मिला देते हैं।
0: जी
1: पानी मिलाने से बच्चे को जो खुराक जितनी मिलनी चाहिए
0: वो
1: वो
0: नहीं मिल
1: नहीं मिल
0: पाती।
1: पाती है, तो इससे भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो दूध चाहे गाय का पिलाएं या कोई भी दूध आप पिलाएं, या माँ अपना दूध दे रही है, फिर तो सबसे अच्छा है ही, सबसे
0: जी
1: उत्तम है बच्चे के
0: जी
1: लिए।
0: जी
1: लेकिन अगर ऊपर का दे रहे हैं तो उसमें आप पानी ना मिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा, प्राय ये देखा गया है कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही कुछ ठंडे पेय पदार्थ पीने की आदत बच्चों की और हम स्वयं की हो जाती है, तो क्या ये ठंडे पेय पदार्थ पीना जरूरी है गर्मी के मौसम में, और जिनका आंखों से कोई संबंध है?
1: ठंडे पेय पदार्थ अगर अच्छे हैं, साफ हैं, आपने घर में बनाए हैं, जैसे शिकंजी है,
0: जी
1: खस का शरबत है, ये सब चीजें हैं, ये कोई नुकसान नहीं करती हैं। हाँ, ये जो आजकल कोका कोला, ये सब पेप्सी वगैरह चल गए हैं, ये
0: जी
1: थोड़ा इनसे परहेज करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा।
0: यानी जो बाजार में जो पेय पदार्थ आ रहे हैं अगर उनके उपयोग से बचें तो ज्यादा अच्छा
1: तो
0: है।
1: ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इनमें चीनी की मात्रा बहुत होती है, आर्टिफिशियल चीजें हैं, तो ये शरीर को नुकसान ही करेंगी, फायदा तो कुछ हमें देंगी नहीं। उस समय बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पीने में,
0: जी जी
1: लेकिन आगे चलकर ये आपको कुछ लाभ नहीं दे रही हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बातचीत में कहा कि चश्मा लगाएं गर्मी से बचाव के लिए, अब जैसे आम आदमी तो जाता है भाई दुकान से चश्मा लिया या कहीं सड़क पर कोई खड़ा हुआ बेच रहा है, तो उसको कैसे ये पहचानेगा कि ये चश्मा सही है या गलत है?
1: देखिए, आम आदमी के लिए शायद ये चीज पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक अच्छी मान्यता प्राप्त दुकान से ले रहे हैं तो किसी हद तक हम इस चीज से बच सकते हैं कि हमने खराब चीज नहीं पहनी है या खराब चीज नहीं खरीदी है। जहां पे आपको लगे कि नहीं, वो ठीक चीज हमें मिलेगी, आप उसी स्थान से चश्मा, धूप का चश्मा खरीदें। कुछ काले चश्मे ऐसे होते हैं जो पार बैंगनी किरणों को रोक नहीं पाते हैं। वैसे तो कुछ अपरेटस ऐसे होते हैं जिनसे उस चश्मे को टेस्ट किया जा सकता है, पर ये हर समय संभव नहीं होता है। ज्यादातर जो ये सस्ते वाले सड़क के किनारे जो चश्मे मिलते हैं, इनमें पार बैंगनी किरणें रोकने की क्षमता कम होती है,
0: जी
1: तो ये चश्मे कई बार आंख में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हो, जहां तक हो सके, 100-200 रुपए का सवाल है, पर आप चश्मा अच्छी दुकान से खरीदेंगे तो आप निश्चिंत रहकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और दुकान से खरीदते समय हम ये भी चाहेंगे कि वो अगर रसीद प्राप्त कर लें तो अगर कोई गड़बड़ भी निकलता है, खराब निकलता
1: ये
0: है,
1: तो
0: तो उसे
1: सबसे
0: आप
1: है
0: वापस कर
1: हाँ,
0: सकते
1: ये तो
0: हैं।
1: सबसे उत्तम रहेगा, ताकि
0: जी
1: अगर बाद में हमें चेकअप करवाने पे या दिखाने पे हमें पता चलता है कि चीज हमें ठीक नहीं मिली है, तो आगे जाके हम उनसे बात तो कर ही सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में जैसे निकलते समय जैसे आपने कहा कि धूप से बचने के लिए कपड़ा बांध लें, टोपी लगा लें, जो ये तो सब चीज करना ही है, और भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बस बाकी तो जैसे लू से बचने के लिए घर से पानी पीकर निकलें, और काला चश्मा तो
0: जी
1: इस्तेमाल करके रखेंगे ही,
0: ठीक है।
1: ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपकी आंख में जलन हो रही है या आंख आपकी लाल हो रही है, तो आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को मिल लें। आजकल कुछ दवाइयां ऐसी मिलती हैं जिन्हें लुब्रिकेंट्स के नाम से जाना जाता है, इनमें
0: जी
1: कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। ये आंख में जो नॉर्मली आंसू बन रहे हैं उसी की तरह का मिश्रण होते हैं,
0: जी
1: ये आप आंख में लगातार इस्तेमाल कर लें तो इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, और ये आंख को साफ करने में भी मदद
0: मदद
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: तो इनको आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, खासकर गर्मी के महीनों में डाल लें तो आंख में
0: जी
1: जो ये जलन, पानी, कीचड़ की सब ये परेशानियां हैं, ये थोड़ी कम हो जाती हैं।
0: डॉक्टर साहब, देखिए आपने दवा की बात कह दी इस बीच में कि दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, तो दवा क्या स्वयं अपने हिसाब से खरीद लें या चिकित्सक के
1: नहीं,
0: परामर्श
1: किसी
0: के अनुसार?
1: किसी चिकित्सक के परामर्श से ही लें।
0: जी
1: ज्यादातर दवाइयां अपने आप, तो दवाई कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कई बार हम जाते हैं दुकान से, कोई दवाई हमें
0: हाँ कि भाई
1: केमिकल पकड़ा
0: आंख में
1: देते हैं।
0: कुछ लाल हो गया या दवा दे
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो पल भर के लिए तो राहत देती हैं, पर आगे चलकर ये नुकसान कर सकती हैं।
0: जी
1: अगर आप किसी विशेषज्ञ के यहाँ गए हैं तो वो आपको समझाकर अच्छी तरह से अच्छी दवाई देंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी आंख को हानि नहीं पहुंचाते हैं,
0: जी
1: पर वो आप किसी अपने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह ले लें और उन्हीं के सलाह से उस दवाई को इस्तेमाल करें।
0: ठीक, तो सुना आपने कि किस तरह से

0: गर्मी के मौसम में आप अपनी आंखों की सुरक्षा करके और स्वस्थ रह सकते हैं, और आंखें स्वस्थ होंगी तो आपको अच्छा और साफ सुथरा दिखाई देगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ बताई कि एक तो दवा आप जो है बिना चिकित्सक की राय के न लें, और दूसरा चश्मे जो हम शौक में लगा लेते हैं तो शौक में चश्मा न लगाएं। आप जो है चश्मे एक मापदंड के हिसाब से जो दुकानें हैं वहां से खरीदें, स्टैंडर्ड कंपनी का ही खरीदें, रसीद ले लें, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप उसको वापस कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने गर्मी के मौसम में आंखों की सुरक्षा के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में आंखों की देखभाल। आज वाणी अग्रवाल से बातचीत कर रहे थे राम सेवक।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: भैया देखो, कैसा भी हो लेकिन चटपटी चाट और बात दोनों ही थोड़ी तीखी जरूर लगे लेकिन मजा देती है। तो भैया सुनिए ये गीत जिसमें मिर्च की हो रही है बात।

साथियों, आज तारीख है 18 मई और इस दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में भी है। मित्रों, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचाव ही उपचार है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य ही लोगों को एड्स यानी कि एचआईवी के प्रति जागरूक करना और इसकी वैक्सीन खोजने के प्रयास को बढ़ावा देना है, क्योंकि यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देती है। साथियों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और प्रभावी एचआईवी वैक्सीन की आवश्यकता पर जोर देना और इस दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को सम्मानित करना है। मित्रों, इस बीमारी में समय पर जांच और सही जानकारी के साथ एचआईवी संक्रमित लोगों को जीवन सहज बनाना ही इसका दिवस का उद्देश्य है और यह हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। तो आइए मिलकर एड्स से लड़ें, जागरूकता बढ़ाएं और जीवन सरल बनाएं। और साथियों, इसी के साथ हम आपको मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। आज आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र का तापमान लगभग 47 डिग्री तक दर्ज किया गया एवं न्यूनतम तापमान 35 डिग्री तक रहने का अनुमान है। कल यानी मंगलवार को तापमान 47 डिग्री तक ही रहने की संभावना है। तो भैया, रखिए अपनी सेहत का ध्यान और करते रहिए शरबत चिकंजी का पान और बचाइए गर्मी से जान और गाइए हमारे साथ मिलकर ये गाना।

और मित्रों, अब हम अरहर दाल की नई किस्मों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दफ्तरी 48 गोल्ड, जो कि मध्य अवधि में तैयार हो जाती है, और दफ्तरी 345 अरहर दाल की, जो वो भी मध्यम अवधि में तैयार होने वाली एक अच्छी फसल है। इसी के साथ अंकुर चारू अरहर, जो 155 दिन में तैयार हो जाती है, और अंकुर प्रभा, जो 155 दिन में ही तैयार हो रही है।

और निर्मल दुर्गा अरहर 170 दिन में तैयार होने वाली नई फसल है, जो आप इसको जल्दी ले सकते हैं। ये जुलाई अगस्त महीने में लगाकर आप 10 से 13 क्विंटल तक इसकी उपज ले सकते हैं। तो भैया, अरहर दाल की नई किस्मों की बात हो गई, और इसी के साथ अब आप मंडी भाव भी जान लीजिए। आज मंडी आगरा मंडी भाव में चना दाल का भाव रहा 7,350 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल 9,700

चना दाल का भाव रहा 7,350 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल 9,700 रुपये से 9,950 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग दाल 8,850 से 9,050 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग दाल 9,150 से 9,350 रुपये प्रति क्विंटल। और इसी के साथ आज का ग्राम्य लोक कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपकी रेडियो साथी ऋतुजा को नमस्कार।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजुबाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप और बताएं साथियों, कैसे हैं आप? ये सुनते ही सोच रहे होंगे आप कि भला ये गर्मी में हमारा क्यों हाल ऐसा पूछ रही हैं। भाई ये तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वाकई गर्मी बहुत है और गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। भाई पारा जब 40 के ऊपर पहुंच जाता है ना, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी बेहाल हो जाते हैं। और भरी दोपहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय साइकिल स्कूटर में जब पंचर हो जाए, ओहो, सड़क किनारे या दूर दराज स्थान पर सर छुपाने को जगह ना मिले, तब पेड़ों की ठंडी छांव बहुत याद आती है। और ये एहसास हर किसी को कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। जब ऐसे अनुभव हमें होते हैं तब पेड़ों का महत्व समझ आता है। वैसे ऐसा नहीं कह सकते, नॉर्मली हमें पता ही नहीं है कि वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारी धरती को सुरक्षित रखने में इनकी क्या भूमिका है। जानते तो सभी हैं पर कुछ करते नहीं हैं। और बिना कुछ किए हमारी धरती कैसे हरी भरी रह सकती है? वैसे अब क्योंकि हालात बिगड़ने लगे हैं, तरह तरह की आपदाएं सामने आने लगी हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा करने वाली प्रकृति ही असुरक्षित है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आधुनिक विकास की दौड़ में नए आवास, नई इमारतें, नए पुल, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। इंसान सुख सुविधा पसंद हो गया है, हर चीज़ पर नियंत्रण चाहता है, पर प्रकृति किसी के दबाव में नहीं आती। हमने कुछ गलत किया तो 4 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। प्रकृति के अपने नियम हैं, अगर हम उसे नुकसान पहुंचाए बिना एक सीमा में रहकर काम करें तो प्रकृति भी खुश और हम भी। वैसे काफ़ी संख्या में लोगों ने इस ओर कदम उठाए हैं। अपनी बात बताएं, मैं एक बार एक सत्संग में गई तो उपहार के तौर पर या समझिए कि प्रसाद के तौर पर सभी को एक एक पौधा दिया गया, वो भी गमले में लगा हुआ। मैं सोच रही थी, वाह ये तो बहुत बढ़िया तरीका है प्रकृति से प्रेम निभाने का, उसका धन्यवाद करने का, उसकी सुरक्षा करने का। क्यों ना साथियों हम सब भी अपनी धरती माँ को बचाने के लिए उसका श्रृंगार करें पेड़ लगाकर।

आपको याद होगा साथियों, एक समय में पेड़ काटने को लेकर एक बहुत जाना माना आंदोलन भी हुआ था। क्या नाम था उसका? हमें याद तो है पर हम बताएंगे नहीं। चलिए आप याद करके हमें बताइए, क्योंकि यही आज का प्रश्न भी है। साथियों, आज भी उसी जज्बे की जरूरत है, तभी पेड़ों का काटना रुकेगा। और एक समझदार इंसान का ये फर्ज भी है कि कुछ गलत होते हुए अगर देखे तो विरोध करे। और आप जरूर ऐसा करेंगे, आखिर आप भी तो अपना घर यानी हम सब का घर, ये धरती, इसको बचाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी धरती माँ के लिए कसम खाइए हमारे साथ कि साल में 4-5 पेड़ तो ज़रूर लगाएंगे। और साथियों, अगर हम सब अपनों के साथ मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और पेड़ लगाना एक मिशन बन जाएगा। तो चलो सब मिलकर हमारे साथ दोहराओ, पेड़ लगाओ धरा बचाओ। क्योंकि जब हम पेड़ों को अपना समझेंगे, प्रकृति के दर्द को महसूस करेंगे, तो वो भी हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारा प्यार समझ जाएगी, क्योंकि उसमें भी तो जीवन होता है।

0: पत्ता पत्ता बूटा बूटा सबका हाल जानता है और उन पक्षियों का दर्द भी समझता है जो पेड़ों के कटने से अपने घोंसलों के बिखर जाने से भटक रहे हैं। सच में ये पक्षी कितने प्यारे लगते हैं, कितनी अनोखी और सुरीली लगती है इनकी आवाज़, इनकी बोली। साथियों, घोंसलों की बात कर रहे हैं तो बचपन याद आ रहा है, जब घर की खिड़की पर चिड़िया घोंसला बनाती थी तो फर्श पर तिनके बिखर जाते थे। मैं उन तिनकों को दिन में कई बार समेटती तो माँ कहती कि कोई बात नहीं, बार बार मत हटाओ, वो घोंसला बनाएंगी तो ये सब तो होगा ही। अब समझ में आता है कि माँ की इन्हीं बातों के कारण हमें भी पक्षियों से बहुत प्रेम है। और पता है साथियों, फिर हम बच्चों की आवाज़ का इंतज़ार करते थे। कभी कभी चिड़िया के जाने के बाद स्टूल पर चढ़कर हम भाई बहन घोंसले में झांक लेते थे। बस बच्चों का इंतज़ार रहता था, वो बहुत प्यारे लगते थे। सच में साथियों, हमें कोई हक नहीं कि हम पक्षियों का घर तोड़ें पेड़ काटकर। बच्चे तो सभी के बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलो साथियों, आज हम गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की भी बात कर लें। जो परिवार के नन्हे सदस्य को घर में लाने वाली हैं तो सेहतनामा के अंतर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल से की गई हमारी बातचीत सुनिए। नमस्कार डॉक्टर कमल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार अंजू जी।
0: डॉक्टर कमल, आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान किन किन बातों का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: आपका सवाल बहुत अच्छा है अंजू जी। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भावस्था से पहले की। लड़कियों को पहले तो गर्भावस्था के पहले अपने सारे चेकअप करा लेने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसका गर्भावस्था के पहले उसकी जनरल हेल्थ ठीक रहे। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान महिला को अपने रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। जैसे हमारी 9 महीने की गर्भावस्था होती है, शुरू के 3 महीनों में जैसे ही उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है, उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उसको अच्छे खान पान की सलाह देते हैं। शुरू में 3 महीने उसको फोलिक एसिड के टैबलेट दिए जाते हैं। खान पान में इन्हें पूरे 9 महीने के लिए अच्छा खाना पीना खाना चाहिए जो हेल्थ से भरपूर हो। बाहर का खाना ना खाएं। आजकल महिलाएं बाहर का खाना बहुत पसंद करती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन कम होता है, कैलोरी ही होती है केवल।
0: हाँ।
1: तो घर के खाने में जैसे दालें हैं, दूध है, दही है, इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, और फल है, मौसमी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ये उन्हें ज्यादा लेना चाहिए। इसमें विटामिन और मिनरल्स अच्छे होते हैं। और 9 महीने फिर डॉक्टर उन्हें अपने हिसाब से जो दवाइयों की जरूरत होती है वो सब उन्हें लिखते हैं, जिससे उनकी हेल्थ गर्भावस्था में ठीक रहे। और उन्हें गर्भावस्था के दौरान ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ महिलाएं हैं वो घर वालों की ना सुन के तेज रनिंग करना है, तेज जंप करना है, भारी वजन उठाना है, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है बाइक से, कार में, बस में, तो थोड़ा सा ये सब चीजें अवॉइड।
0: भाई अब ये देखिए डॉक्टर कमल, ये महिलाएं जो है अगली पीढ़ी को परिवार में लाने की तैयारी में है, क्या होता है कि ऐसे में होने वाले बदलावों को सभी सदस्य कैसे समझे और कैसे गर्भवती के लिए सहायक बने।
1: देखिए, जो महिला के घर में और लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके

0: पति है, उनके सास ससुर है, भाई बहन है, जो भी है, सबको इस अवस्था में महिला का सपोर्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है घर में सारा काम एक महिला के ऊपर होता है और उस अवस्था में वो इस लाइक नहीं होती कि पहले की तरह सारा उनका फिजिकल वर्क कर सके, तो थोड़ा घर वालों को उन्हें रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर। 8 घंटे की नींद जरूरी है महिला के लिए, है ना, जो काम वो पहले करती थी जिसमें वो कंफर्टेबल है उतना कर सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम इस वक्त महिला के लिए और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो घर में जो भी लोग हैं, घर वाले उनकी फिजिकल रेस्ट को समझें, उन्हें प्रॉपर आराम करने दें और थोड़ा बहुत काम करने के लिए कोई मना नहीं करते हैं डॉक्टर। महिलाएं एक्टिव रहें लेकिन अपने ऊपर ज्यादा काम नहीं लें। दूसरी चीज, घर के लोग कई बार उन्हें अरे ये सोती रहती है, तो ऐसा मेंटल प्रेशर भी महिला के ऊपर नहीं डालें, क्योंकि जो माँ की मेंटल अवस्था होती है और जो फिजिकल अवस्था होती है वो सब अंदर पलने वाले बच्चे को इफेक्ट करती है। महिला अगर टेंशन में रहेगी कहीं ना कहीं उसका बच्चा भी अफेक्ट होगा। तो एक स्वस्थ बच्चा, एक स्वस्थ महिला पैदा करे, उसके लिए घर के बाकी सदस्यों को भी 9 महीने महिला का सपोर्ट करना चाहिए।
1: और ऐसे में महिला को जिस तरह के कौन कौन से टीके लगने हैं या कौन सी दवा उन्हें लेनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आप बताएं।
0: जैसे ही महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में जब उसे प्रेगनेंसी का पता चलता है, डॉक्टर्स के पास जाती है, उन्हें एक पढ़े लिखे ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो केवल प्रेगनेंसी को बहुत बारीकी से समझते हैं उनके पास जाना चाहिए। शुरू के 3 महीनों में डॉक्टर उन्हें फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं, कि जो भी उनकी कंडीशन है, मान लीजिए किसी महिला को बहुत उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनकी दवाइयाँ देते हैं। और अगले 3 से 6 महीने में और 6 से 9 महीने में आयरन की दवाएं चलती हैं, कैल्शियम की चलती हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, और महिला को जो भी और अदर वीकनेस है या कोई और बीमारी है उसकी दवाएं डॉक्टर देते हैं। टीके में ये टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, पहला टीका डॉक्टर्स उन्हें 4th या 5th महीने में लगाते हैं, दूसरा टिटनेस का टीका 7th महीने में लगाया जाता है और तीसरा 9वें महीने में। ये टीके महिला को और बच्चे को टिटनेस होने से बचा।
1: जैसे अगर कोई महिला है जिसे पहले से कुछ परेशानियां हैं, तो उसमें वो क्या क्या सावधानी बरते?
0: अगर किसी महिला को पहले से कोई परेशानी है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। छुपाने से महिला को कोई लाभ नहीं होता। अगर मान लीजिए उसे पहले से ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज की समस्या है या थायराइड की है, खून की कमी है, तो बताने से उन्हें ये होगा कि डॉक्टर वही दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जो बच्चे के लिए सेफ हो।
1: और ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे महिलाओं का इस टाइम में कुछ खाने का जैसे मन नहीं कर रहा है शुरुआत के दिनों में, तो घर के लोग जो हैं उन ज्यादा केयर करते हैं, तो वो बहुत ना चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये तो कुछ खा ही नहीं रही, तो अब ये तो सही नहीं है, जैसे कि बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है।
0: इतना चिंता करने की जरूरत नहीं हो, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फीमेल के लिए अवस्था है, बस इसमें हमें सपोर्ट की और केयर की जरूरत होती है। शुरू के 3 महीनों में जब बच्चा विकसित हो रहा होता है, तो कई महिलाओं को उल्टी की समस्या, भूख ना लगना या उल्टी का मन होना होता है, तो हम उन्हें जो उन्हें अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा खाने के लिए सपोर्ट करते रहे। थोड़ी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं जिससे महिला को बहुत ज्यादा उल्टियाँ वगैरह ना हो, थोड़ा बहुत तो वो खा सके। वक्त के साथ 4th-5th महीने से ये समस्याएं कम होने लगती है, अपने आप भी एक नेचुरल भूख पर आ जाती है, तो इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है।
1: अब जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है ना, इस अवस्था को इतनी गंभीरता से नहीं लेती, उसके क्या क्या मतलब ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कामकाजी महिलाएं भी हैं
0: उसमें, ये महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, अच्छा खाती पीती नहीं है, जो मन आ रहा है वो कर रही हैं, ओवरवर्क भी कर सकती हैं, जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, कई वजन उठाने वाला काम भी करती हैं, कई ओवर फिजिकल वर्क करती हैं, तो इसमें क्या आगे जाके मान लीजिए कोई महिला दवाई भी नहीं खा रही है घर में, अच्छा खाने का ध्यान भी नहीं रख रही है, सबका ध्यान रख रही है अपना ध्यान नहीं रख रही है और काफी टाइम तक वर्क कर रही है, इसमें क्या आगे जाके महिला में खून की कमी होना, कमजोरी होना, डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशन होना, डिलीवरी के बाद कमजोरी आना, ये सब हो सकता है। बच्चे में ये है कि बच्चे का विकास कम हो जाना, बच्चे का वजन कम रह जाना, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का बीमार हो जाना या उसका सीरियस हो जाना, ये सब हो सकता है।
1: जैसे ये गर्भावस्था का जो समय है, इस समय में क्या होता है कि एकदम कई महिलाओं को बहुत एकदम गर्मी सी लगती है और जैसे उनका ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और जैसा कि ये मौसम चल रहा है बारिश वाला खास तौर पे, तो उसमें उनको कई तरह के त्वचा रोग वगैरह या खुजली, इन्फेक्शन या कुछ वायरल वगैरह ये सब कुछ हो जाता है, तो ऐसे टाइम में वो क्या करें?
0: ऐसे टाइम में वो बिल्कुल चिंतित ना हो, अपने डॉक्टर के पास जाए, वो उनका रूटीन चेकअप करेंगे, बीपी शुगर वगैरह सब, और अगर उन्हें कोई मौसमी इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए वो ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे जो बच्चे पे इफेक्ट ना करे, तो इसके लिए चिंतित ना हो। फिर भी थोड़ा सेफ्टी लेके चले, जैसे मौसम में बाहर का कम खाए,

0: जिससे पेट के इन्फेक्शन ना लगे,
1: हाँ,
0: घर में थोड़ा सफाई का ध्यान रखें जिससे
1: हाँ,
0: उन्हें स्किन के इन्फेक्शन ना लगे।
1: और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
0: महिला को खुद को और उसके घर वालों को उसको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी के बाद महिला में कमजोरी तो आती ही है। बच्चे के लिए भी बच्चे की साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चे को माँ के दूध के लिए प्रेरित करें, स्पेशली बच्चा माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है।
1: कमल, आपने हमको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अंजू जी।
2: अरे राहुल, ये झूठ का बैग और हाथ में मोबाइल।
3: तो साथियों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर कमल द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा। साथियों, हमारा सोमवार का पूरा कार्यक्रम ही स्वास्थ्य पर आधारित होता है, तो इसे याद से सुना कीजिए ताकि स्वस्थ बने रहें। स्वास्थ्य पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर बता दें ताकि श्रमिक साथियों की बेचैनी तो कम हो। और उत्तर है चिपको आंदोलन, जिसमें लोग पेड़ों के बचाव के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और इस विरोध के कारण पेड़ों को काटने से बचाया जा सका। ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। वही मीठे फल हमें इन्हीं से तो मिलते हैं, इस गर्मी से हमें बचाते भी हैं। गर्मियों में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैसे बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ कर खाना खाया जाता है। गरिष्ठ भोजन से तो तौबा, क्योंकि पेट दर्द या किसी तरह का संक्रमण ना हो जाए। एक और बात भी कही जाती है गर्मियों में स्वस्थ रहने को लेकर कि खाओ कम और पियो ज़्यादा। वैसे भी ऐसी गर्मी में हल्का फुल्का खाना ही अच्छा लगता है और सेहतमंद भी होता है। और आधा पेट तो पानी से ही भरा रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने का मन होता है। ऐसे में घर के बने पेय पीना लाभकारी रहता है, जैसे शिकंजी, आम का पना और कांजी। नाम सुना है आपने इसका? ये गाजर या शलजम से बनती है। छोटे पतले टुकड़ों में गाजर या शलगम काट कर धोकर कांच के मर्तबान में डालें, साथ ही मर्तबान को पानी से भर दें। उसमें राई, काला नमक, पुदीना, थोड़ी सी पिसी काली मिर्च डालकर 5-6 दिन के लिए रख दें। बस फिर चाहे तो थोड़ी सी बर्फ मिलाकर जब जी चाहे तब पिए। इससे पाचन दुरुस्त होता है और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। और साथियों, अगर आप बाज़ार से गन्ने का रस या कोई और रस या शरबत पिए तो ज़रूर ध्यान दें कि वो सफाई से बनाया गया हो। क्यों कोशिश करें कि घरेलू नुस्खे अपना कर घर में जो पेय बने हैं उनका ही सेवन करें, ताकि ऐसी गर्मी में कुछ तो राहत मिले। वैसे साथियों, आज हम ज्ञान सागर में आज मनाए जाने वाले दिवस के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, एड्स का नाम तो आपने सुना ही है, ये एक खतरनाक बीमारी है और अब तक इस बीमारी से बचने का कोई कारगर उपाय नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके लिए कोशिश में लगे रहते हैं और एक ऐसा टीका बनाने में लगे हैं जिससे इस बीमारी के वायरस पर नियंत्रण पा सके, क्योंकि एक बार ये बीमारी हो जाने पर मरीज सिर्फ सावधानी बरत कर जी सकता है, क्योंकि इस बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर रखने वाली कोशिकाओं पर संक्रमण का असर होने के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए किसी भी बीमारी का तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। श्रमिक साथियों, इस बीमारी के प्रति जागरूकता ही इसका बचाव है और इसलिए दुनिया के लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने और इसके बचाव के लिए तरह तरह के परीक्षण में लगे और टीके को बनाने में सहयोग देने वाली टीम को धन्यवाद देने के उद्देश्य से हर साल आज ही के दिन को विश्व एड्स टीका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, एड्स ने पूरी दुनिया को एक समय डर और भ्रम में डाल दिया था। जब 1986 में इस बीमारी के मरीज बढ़ने लगे, तब 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने भाषण में विज्ञान के इस युग में दुनिया को एड्स के टीके को विकसित करने के लिए कहा। तभी 1998 से हर साल 18 मई को, यानी आज ही के दिन को, विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। सच में साथियों, इस दिवस के कारण हुई जागरूकता ने समाज की इस बीमारी के प्रति

0: की सोच बदल दी, वरना एक समय लोग खुलकर बात करने में भी झिझकते थे। लेकिन आज जागरूक रहकर और एहतियात बरतकर खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी तो ट्रेन में मैं रेडियो के कार्यक्रम सुन रही थी। ये सब हमारे पास बैठा परिवार नोट कर रहा था। खैर, उनसे बातचीत हुई, हमने मजदूर मंडल कार्यक्रम के बारे में बताया, वो कैसे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हैं ये भी बताया। अच्छा लगा ये देख कर कि वो रुचि दिखा रहे थे। बाद में पता चला कि उनके परिवार में भी कोई रिश्तेदार आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, उन्होंने पत्र लिखा है, तो हमने आज की पाती में उसे शामिल कर लिया और उन्हें कॉल करके हमने बता भी दिया है कि आप अपनी पसंद का गीत सुनिएगा और हम आपका नाम भी बताएंगे। और उनका नाम है स्नेहा, श्रुति, संध्या, सपना और नानू।

ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के

0: कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi held restricted and delegation level talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in several areas. In a joint press statement, Prime Minister Modi said, "The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity."
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister also welcomed Norway's decision to join the Indo-Pacific Oceans Initiative. Prime Minister Gahr Støre conveyed strong support for India's and the global fight against terrorism. The leaders also agreed to enhance cooperation in multilateral fora. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said that discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. Talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's tour reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. The BJP has said that it is a matter of immense pride for every Indian that Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the Sweden's highest honour for a head of government, the Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross. Briefing reporters in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said that this recognition marks the 31st international honour bestowed upon Prime Minister Modi. He said this honour is not merely a recognition of Mr. Modi as an individual, but a symbol of establishing the potential and excellence of 140 crore Indians on the global stage. CBI has arrested 10 accused so far in neat paper leak case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. In the last 24 hours, CBI has also conducted searches at 5 locations at various places and seized several incriminating documents.

0: laptops and mobile phones. The investigation conducted so far has brought out the actual source of the leakage of chemistry and biology papers which were circulated before the exam. The Enforcement Directorate has arrested Aam Aadmi Party AAP leader Deepak Singla in an alleged bank fraud case. Earlier, the agency conducted searches in Delhi and Goa in the case against Singla and other hawala operators this morning. It is alleged that he is handling the hawala operations for the fund movement for the Aam Aadmi Party between Delhi and Goa and defrauded Oriental Bank of Commerce of more than 150 crore rupees. A high-level US industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the US nuclear industry, business stakeholders and officials associated with India-US cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. In IPL cricket, Chennai Super Kings won the toss and opted to bat against Sunrisers Hyderabad at the M.H. Chidambaram Stadium. The match will begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. And that is the end of this news bulletin.
1: Bharat aur Europe apne
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम आपको सुना रहे हैं वार्ता जिसका विषय है जीवंत सांस्कृतिक संवाद के केंद्र है हमारे संग्रहालय। वार्ताकार हैं अनेंद्र सिंह।
3: हर सभ्यता की आत्मा उसकी विरासत में बसती है। किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं, इमारतों या आर्थिक शक्ति से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, स्मृतियों और सांस्कृतिक धरोहरों से होती है। यही विरासत हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, वर्तमान को समझने की दृष्टि देती है और भविष्य के लिए दिशा निर्धारित करती है। इसीलिए संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह भर नहीं होते, बल्कि वे मानव सभ्यता की स्मृति, संवेदना और चेतना के जीवंत केंद्र होते हैं। वे इतिहास को संजोते हैं, संस्कृति को संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जैसे आयोजनों का उद्देश्य भी यही होता है कि दुनिया यह समझ सके कि संग्रहालय केवल अतीत की कहानी भर नहीं सुनाते, बल्कि समाज को जोड़ने, संवाद बढ़ाने और सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने का कार्य भी करते हैं। आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, तब सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का स्वरूप भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। डिजिटल तकनीक ने संग्रहालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के सामने नई संभावनाएं खोल दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। आज का यह समय केवल विरासत को बचाने का नहीं, बल्कि उसे इस डिजिटल युग में सार्थक और जीवंत बनाए रखने का है। किसी भी समाज का इतिहास केवल पुस्तकों में जीवित नहीं रहता, वह उसकी धरोहरों, कलाकृतियों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक स्मृतियों में भी सांस लेता है और संग्रहालय इन्हीं स्मृतियों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। कोई भी संग्रहालय किसी भी समाज के अतीत और भविष्य के बीच एक पुल की तरह होता है। वे समाज की सामूहिक स्मृति होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे और हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा कैसी रही। कभी संग्रहालयों को केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार घर ही माना जाता था, लेकिन आज उनकी भूमिका कहीं और अधिक व्यापक हो चुकी है। आज के संग्रहालय शिक्षा के केंद्र, सांस्कृतिक संवाद के मंच हैं, सामाजिक समावेशन के माध्यम होने के साथ साथ शांति और सह अस्तित्व के प्रतीक भी हैं। आज वैश्विक स्तर पर संग्रहालयों को समाज से जोड़ने वाली संस्थाओं के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आईकॉम ने भी हाल के वर्षों में संग्रहालयों की भूमिका को संवाद, समावेशन और सामाजिक एकता से जोड़ा है। डिजिटल युग में तकनीक विरासत संरक्षण का नया अध्याय लिख रही है। पहले कोई दुर्लभ पांडुलिपि, मूर्ति या कलाकृति केवल संग्रहालय की दीवारों तक ही तो सीमित रहती थी,

लेकिन आज वही विरासत इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, 3D स्कैनिंग और डिजिटल आर्काइव्स जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकती है। आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप और आग जैसी अनेक आपदाओं का सामना कर रही है और ऐसे में सांस्कृतिक धरोहरों के नष्ट होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इनका डिजिटल संरक्षण एक अत्यंत आवश्यक चुनौती बन गया है। संग्रहालयों तक सीमित पहुंच के कारण हर व्यक्ति विदेश जाकर विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय तो नहीं देख सकता, लेकिन डिजिटल संग्रहालयों और वर्चुअल एग्जीबिशंस ने यह दूरी समाप्त कर दी है। आज कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दुनिया की किसी भी महत्वपूर्ण धरोहर को देख सकता है, समझ सकता है और इससे शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता को भी नया विस्तार मिलता है। और यही कारण है कि दुनिया भर में संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान तेजी से डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की वर्तमान नई पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में जी रही है, उसको उस विरासत से जोड़ने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। आज की युवा पीढ़ी के समक्ष यदि विरासत को केवल पारंपरिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो युवाओं की रुचि कम हो सकती है, इसलिए संग्रहालय अब इंटरैक्टिव स्क्रीन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल टूर और AI आधारित प्रस्तुतियों का उपयोग करते हैं। डिजिटलीकरण और डिजिटल आर्काइव्स में दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों, मूर्तियों और दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे मूल वस्तु को बार बार छूने की आवश्यकता कम होती है और उसका संरक्षण आसान हो जाता है। आज 3D तकनीक के माध्यम से ऐतिहासिक इमारतों और कलाकृतियों के अत्यंत सूक्ष्म डिजिटल मॉडल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे भविष्य में क्षति होने पर पुनर्निर्माण और अध्ययन आसान हो सकता है। हालिया शोधों में डिजिटल ट्विन मॉडल्स सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तकनीक जितनी संभावनाएं लेकर आई है, उतनी ही गंभीर चुनौतियां भी सामने लेकर आई है। डिजिटल संरक्षण की भी अपनी तमाम चुनौतियां हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रामाणिकता का संकट एक विकट चुनौती है। किसी एक प्राचीन मूर्ति को स्क्रीन पर देखना और उसे वास्तविक रूप में महसूस करना, ये दोनों अनुभव अलग अलग हैं। चिंता की बात यह है कि अत्यधिक डिजिटलीकरण कहीं संग्रहालयों की आत्मा को कमजोर तो नहीं कर देगा, और साथ ही डिजिटल संरक्षण एक अत्यंत महंगा कार्य है। 3D स्कैनिंग, हाई रेजोल्यूशन स्टोरेज सर्वर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों के लिए बड़े बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि कोई महत्वपूर्ण डिजिटल आर्काइव्स यदि नष्ट हो जाए या हैक हो जाए तो ये सांस्कृतिक स्मृति के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इसके अलावा डिजिटल असमानता और सांस्कृतिक स्वामित्व जैसे बड़े नैतिक प्रश्न भी हमारे सामने हैं। यदि विरासत को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक सीमित कर दिया जाएगा तो समाज का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित भी रह सकता है, इसलिए संतुलन बड़ा जरूरी है। तकनीक का उपयोग तो हो, लेकिन मानव और सामाजिक पहुंच भी बनी रहे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और विविध सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश है। यहाँ हजारों स्मारक, पांडुलिपियां, लोक कलाएं और परंपराएं मौजूद हैं। इतनी विशाल सांस्कृतिक विविधता को डिजिटल माध्यम के जरिए संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ सुरक्षित रख पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु आज की युवा पीढ़ी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा सकती है। डिजिटल पीढ़ी को विरासत से जोड़ना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि युवा अपनी संस्कृति और इतिहास से कट गए तो समाज अपनी पहचान खो देगा। इसलिए शिक्षा, डिजिटल कहानी कहने की कला, वर्चुअल एग्जीबिशंस और सांस्कृतिक सहभागिता के माध्यम से युवाओं को विरासत संरक्षण से जोड़कर हमें तकनीक का उपयोग संवेदनशीलता और संतुलन के साथ करना होगा। हमें तकनीक तो अपनानी होगी, लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी बचानी होंगी। डिजिटल पहुंच बढ़ानी होगी, लेकिन वास्तविक अनुभव का महत्व भी बनाए रखना होगा। यदि तकनीक और संवेदना साथ चलें तो संग्रहालय भविष्य

0: विश्व में भी मानवता की सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बने रहेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि संग्रहालयों को केवल वस्तुओं के भंडार के रूप में नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक संवाद के केंद्र के रूप में देखा जाए, क्योंकि अंततः विरासत को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि मानवता की आत्मा को सुरक्षित रखना है। विरासत केवल अतीत नहीं, हमारे भविष्य की पहचान भी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। जीवंत सांस्कृतिक संवाद के केंद्र है हमारे संग्रहालय। वार्ताकार थे अनिंद्र सिंह। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
9: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
8: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
10: मंत्री परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% 50% राज्य सरकार।
8: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रुपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य

0: प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
2: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों

0: 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी

0: होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाई फाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
11: आज ही सर्च करूंगा।
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
13: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
13: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
12: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
14: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओ प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आज हमने जो विषय चुना है वो युवाओं को लेकर चुना है। जी हाँ, आज का युवा ही कल के देश का भविष्य है। पर श्रोताओ, आज का युवा ही टेंशन में है, क्यों? ये समस्या है। तो इस समस्या पर और इसके समाधान पर आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बातें करेंगे। साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। किसी देश की प्रगति, विकास और भविष्य उसके युवाओं की सोच, ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। और वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में तो युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए हमारे भारत देश को युवाओं का देश भी कहा जाता है। साथियों, आज का युवा तकनीकी रूप से सक्षम, जागरूक और आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाला है। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। लेकिन श्रोतो, दूसरी ओर एक दुखद सत्य ये भी है कि आज का युवा मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद

और असुरक्षा से घिरता जा रहा है। छोटी छोटी उम्र में बच्चे और युवा तनाव का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता, करियर की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया का प्रभाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा युवाओं के मन को परेशान कर रही है। साथ ही अब प्रश्न ये उठता है कि जो युवा देश का भविष्य है, वही इतना तनावग्रस्त क्यों है? इस समस्या को समझना और उसका समाधान खोजना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। श्रोताओं, आज का सत्य अत्यधिक, जो आज का समय है वो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का समय है। यहां तक कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की एक दूसरे के साथ होड़ लगी हुई है। भाई, अच्छे स्कूल में प्रवेश से लेकर नौकरी पाने तक हम देखते हैं कि हर जगह प्रतियोगिता है। एक विद्यार्थी को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उसे सबसे आगे रहना है, पीछे नहीं रहना। माता पिता और समाज की अपेक्षाएं भी युवाओं पर दबाव बनाती हैं। श्रोताओं, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या सफल व्यवसायी बने। यहां तक कि कई बार बच्चे अपनी रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पढ़ाई और करियर चुनते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि वे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। श्रोताओं, परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों पर इतना मानसिक दबाव होता है कि वे भय और चिंता से घिर जाते हैं। असफलता का डर उन्हें चैन से जीने नहीं देता। कुछ युवा तो इस दबाव को सहन नहीं कर पाते। श्रोताओं, ये स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत चिंताजनक है।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोतो, आज हम आपसे बातें कर रहे हैं युवाओं पर। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का युवा सोशल मीडिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म उसकी दिनचर्या का तो जैसे हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, सोशल मीडिया ने जहां जानकारी और मनोरंजन के नए रास्ते खोले हैं, तो वहीं दूसरी ओर तनाव का एक बड़ा कारण भी बन गया है। युवा दूसरों की चमकदार जिंदगी देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। कोई महंगी कार दिखाता है, कोई विदेश यात्रा, कोई महंगे कपड़े और कोई अपनी सफलता। ये सब देखकर कई युवाओं को लगता है कि वे जीवन में पीछे रह गए हैं। वे अपने वास्तविक जीवन की तुलना दूसरों की दिखावटी दुनिया से करने लगते हैं। श्रोताओं, लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ ने युवाओं की मानसिक शांति तक छीन ली है। यदि किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो वे निराश हो जाते हैं। धीरे धीरे ये चिंता और आत्मविश्वास की कमी का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया ने युवाओं को बाहरी दुनिया से जोड़ने के साथ साथ मानसिक रूप से अकेला तक भी कर दिया है। भारतीय समाज जो श्रोताओं है, ये जो परिवार है भारतीय समाज में, इसका हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। परिवार अपने बच्चों को जीवन की दिशा देता है, लेकिन कई बार यही परिवार अनजाने में तनाव का कारण भी बन जाता है। कैसे?

कुछ माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने के बजाय केवल अंक और सफलता को महत्व दे देते हैं। वे बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कई बार तो देखने में ये भी आता है कि माता पिता यहाँ तक कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो तुम मेरे सपने को पूरा करोगे। श्रोताओ, इस दबाव, इस तनाव को वही बच्चा समझ सकता है जिससे ये कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अपनी उम्मीद को अपने बच्चों पर हम लाद भी देते हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि माता पिता अपने बच्चों में सपना पूरा करते हैं तो बुरा है, लेकिन बच्चे की रुचि को भी तो देखना चाहिए, जिससे कि वह अपने आप को उस रुचि के अनुसार अपने करियर को चुने, जिससे कि उसको मानसिक चिंता ना हो और खुशी भी प्राप्त हो। किसी दूसरे के द्वारा थोपा गया जो अपना सपना है, हो सकता है श्रोताओं के वो बच्चा उसको पूरा करने की कोशिश करे, पर उसकी मानसिक स्थिति क्या बिगड़ेगी नहीं, ये सोचना हर माता पिता की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा श्रोताओं, आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, उसने युवाओं की दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया है। हम सभी देखते हैं, देर रात तक जागना, मोबाइल का अधिक प्रयोग, अनियमित भोजन और शारीरिक गतिविधियों की जो कमी हुई है, इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हुए हैं। योग, खेल और प्रकृति से दूरी भी तनाव को बढ़ाने का एक कारण है। पहले लोग मानसिक शांति के लिए परिवार, मित्रों और सामाजिक गतिविधियों का सहारा लेते थे, लेकिन आज का युवा अधिकतर समय डिजिटल दुनिया में बिताता है। इससे उसका मन अस्थिर और चिड़चिड़ा हो जाता है। श्रोताओ, आज समाज में सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि और बड़े पद से जोड़ा जाने लगा है। युवाओं को ये महसूस कराया जाता है कि यदि उनके पास अच्छी नौकरी, बड़ा घर और महंगी चीजें नहीं हैं, तो वे सफल नहीं हैं। श्रोताओ, ये सोच युवाओं को लगातार दबाव में रखती है। वे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भूलकर केवल दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वे अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। श्रोताओ, वास्तविक सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में है। यदि युवा इस बात को समझें, तो वे तनाव से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं।

लालच है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर

0: नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, युवाओं को तनाव से बचाने के लिए परिवार, समाज और सरकार सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। माता पिता को बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए, उन्हें बच्चों की रुचि और क्षमता को समझना चाहिए। बच्चों से खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि तनाव जीवन का हिस्सा है और उसका समाधान भी संभव है। इसके अलावा श्रोताओं, युवाओं को सोशल मीडिया का सीमित और सकारात्मक उपयोग करना सिखाना चाहिए। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज वास्तविक नहीं होती। श्रोताओं, युवाओं को यह समझना चाहिए कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलता हमें सीख देती है और आगे बढ़ने की और जीवन में आगे चलने की। करियर और जीवन से जुड़ी समस्याओं के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। इसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आज का युवा देश का भविष्य है, उसके सपनों और ऊर्जा से ही देश और आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि वही

युवा तनाव, चिंता और निराशा में डूबा रहेगा तो देश का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम युवाओं की समस्याओं को समझें और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने का भी प्रयास करें। साथ ही युवाओं को भी ये समझना होगा कि जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि युवा आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन अपनाए तो वे न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। और वैसे भी श्रोताओं, हार के आगे जीत है, ये तो हम सभी ने सुना है और यही जिंदगी की रीत है।

श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामी गजल। इस कार्यक्रम में श्रोताओ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से चंद गजलें, प्रोग्राम की पहली गजल।

0: श्रोताओं, रूप कुमार राठौर के स्वर में अभी आपने फिल्म जिस्म से यह गजल सुनी, जिसे लिखा था सईद कादरी ने और धुन बनाई थी MM करीम ने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है। नो

श्रोताओ, ग्लेन जॉन की आवाज़ में ये थी फिल्म वो लम्हे से गज़ल, जिसे लिखा था सईद कादरी ने और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में फिल्म अर्थ से ये गज़ल।

रात भर वो टूट टूट कर गिरते रहे, आशिकों की तड़प सितारों से भी देखी जाती नहीं। जब हजारों सितारों की होती है ख्वाहिश, तब कोई करता है किसी के प्यार की।

श्रोताओं, महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह के गाए फिल्म दहलीज की इस गजल के साथ ही प्रोग्राम शाम गजल अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत में कुछ और गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पारस मणि का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और सखियों की, गीत के बोल थे फारूक कैसर के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म उपासना से ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस

0: प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल

0: मंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: आज हम भारत-नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway.

0: Narendra Singh holds talks with U.S. industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हममनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड V ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफद से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं और गर्मी की इंतहाई शिद्दत के दौरान आयुष की वजारत ने गर्मी से मुतालिक बीमारियों की रोकथाम की गरज से एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के अव्वलीन दौरे के नुमाया नताइज सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई, नीलगू मईशत, ग्रीन कायापलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के ममालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरक तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने जाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरक एतकाद और मुजाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इरादा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगाली के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माब शाह हराल्ड V के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रांड क्रॉस अवार्ड दिया गया।

0: जनाब नरेंद्र मोदी स्वीडन का अपना दौरा पूरा करने के बाद आज सुपहर नॉर्वे पहुंचे थे। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाकर एक जामे शराकत दारी में तब्दील करना, मुश्तरका इख्तराई शराकत दारी 2.0 की शुरुआत करना और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत के कॉरिडोर का आगाज करने समेत ये मुजाकरात इंतहाई बारावर रहे। बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम सब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोजा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मेटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिर रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकतदारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनूई जहानत की शराकतदारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस $1 खरब और अगले 5 बरस में $2 खरब की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वादे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात $863 अरब तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ्त के लिए इस जोशो खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला थकान काम जारी रखना चाहिए।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर खोज किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकतदारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के 2 मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाति बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकत करने की गरज से 2 तहकीकती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की

मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिश्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकत करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज संपति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा, जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर जिले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आजादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले 1.5 बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रिसस से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मुनक्किदा 79वीं आलमी सेहत असेंबली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनूई जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिराहत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की इस्लाहात और आलमी सेहत शराकतदारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहात के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बहरान के बावजूद भारत में खातिर खा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का खातिर खा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से LPG की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाके धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर से हुए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 दीगर जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदेशा है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवनाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने

0: बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और

0: जाकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है, तो इतने सारे लोगों

0: के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स
1: जी
0: मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने
1: जी
0: पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है क्योंकि प्रगनक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैंप होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते
1: ठीक
0: हैं।
1: है। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार जी, जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार। ये
1: नमस्कार, मैं फरहत
2: सारे
1: नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी। जी,
2: सॉरी
1: लेकिन मैं
2: फरहत नाज
1: आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
2: जी।
1: जी
2: और मैं ये जानना चाहता है, अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स मैंने कह रहा था मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे
0: जी
1: इस
0: जी
1: विकल्प में। जी
0: एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में,
1: जी
0: तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है।
1: जी
0: बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभवता नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर
1: जी
0: आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है,
1: जी
0: केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है SE.census.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि
1: जी
0: हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति
1: जी
0: को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
1: जी
0: जहाँ पे

0: मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
2: जी ना, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, यह है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते, क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सब सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
0: बिल्कुल
1: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी
3: जी नमस्कार
1: नमस्कार।
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
1: जी
0: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी
1: जी
0: 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है, और
1: जी
0: नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन
1: जी
0: ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर
1: जी
0: देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट
1: जी
0: उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन।

0: वगैरह दिए।
1: ठीक है। और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार।
2: जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करवानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है, ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी। मैं रवि जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते।
3: जी मैम मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी
4: जी नमस्कार
1: नमस्कार।
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं। तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहां पे रहती है वहां पे उसका
1: जी
0: उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा। और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: जी नमस्ते मैम,
1: जी नमस्कार।
5: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणों को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले। क्योंकि प्रगणक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इंफॉर्मेशन कुछ गलत

0: अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की। स्लम और जेजे क्लस्टर, बेघर आबादी की गिनती, मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं,
1: जी
0: उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे,
1: जी
0: तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना,
1: जी
0: उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है।
1: जी
0: जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए, तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे,
1: जी
0: लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है,
1: जी
0: तो एक-एक सीरीज या एक-एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था,
1: जी
0: क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी,
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान है, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ रुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है,

0: जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहां पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
1: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। खाली प्लॉट को गिनते नहीं है, लेकिन वहां पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है, या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत

0: करता है अनेंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद, एक कार्यक्रम जहां गूंजती हैं आपकी फरमाइशें, महकते हैं आपके एहसास और सजती है आपके मनपसंद गीतों की महफिल। तो आइए आज की इस मधुर प्रस्तुति का आगाज करते हैं और सुनते हैं अपने पहले कॉलर को।
2: हेलो
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
2: जी, मैं इरम बोल रही हूँ।
1: इरम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं आगरा से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आप क्या करते हैं?
2: अभी मैं पढ़ रही हूँ।
1: क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
2: बीए कर रही हूँ मैं अभी।
1: अच्छा, बीए में कौन से सब्जेक्ट से आपके आपका क्या इंटरेस्ट है?
2: मेरे पास इकोनॉमिक है।
1: अच्छा, तो आप आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनती हैं?
2: जी जी बिल्कुल सुनते हैं।
1: कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद आता है?
2: वो कुछ बातें कुछ गीत आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है,
1: अच्छा, उसमें क्या खास लगता है आपको?
2: क्योंकि उसमें हर चीज नए नए अपडेट, जैसे आज का दिन क्या है, कल क्या है, और वो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और साथ में अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं।
1: अच्छा, तो आपको गाने सुनना पसंद है?
2: जी।
1: अब आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: आप सलमान खान के कोई भी गाने बजा दीजिए, मुझे सलमान खान के बहुत गाने पसंद है।
1: ठीक है, आपको हम सलमान खान के सॉन्ग्स में से कोई भी एक गाना सुनवाते हैं
2: जी जी
1: और
2: बिल्कुल
1: आप
2: बिल्कुल
1: आगे भी हमें कॉल करते रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं हितेश बात कर रहा हूँ मैम।
0: हितेश, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं आगरा के राजपुर क्षेत्र जंजीत नगर से बात कर रहा हूँ।
0: और आप क्या करते हैं?
1: मैं टेक्सटाइल मार्केट में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा हितेश, आप क्या क्या शौक रखते हैं?
1: मैम मुझे म्यूजिक सुनना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है।
0: तो आप क्रिकेट के लिए रोज टाइम निकाल पाते हैं?
1: मैम ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते हैं। जब भी छुट्टी होती है तो हम चार दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है। एक्चुअली फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहता
1: हाँ
0: है ये।
1: हाँ मैम।
0: राइट, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम मुझे 90s के दौर के गाने सॉन्ग बहुत पसंद है, बट क्या नाम है, मैं सुनना आज पसंद करूंगा डर फिल्म का, उदित नारायण की चहकी हुई आवाज में सजा हुआ सॉन्ग है तू है मेरी किरण, वो
0: जी
1: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत ही उम्दा चॉइस है आपकी। चलिए आपको ये गीत सुनवाते हैं और आप हमें आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी
1: बिल्कुल
0: आगरा के
1: मैम,
0: साथ।
1: बिल्कुल। थैंक यू।

0: दोस्तों, आपको बता दें कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप हमारी फ़ोन लाइंस पर कॉल करके अपनी फरमाइश बता सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0562-3501-852 और 0562-2970-337। और आप हमें सुन सकते हैं हर सोमवार रात 10 बजे आकाशवाणी आगरा पर। इसी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं अगले दिन यानी मंगलवार दोपहर 3 बजे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो। हाँ, मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ, आकाशवाणी से।
0: ज्योत्सना,
1: हाँ
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, हम आकाशवाणी आगरा से बात कर रहे हैं।
1: जी,
0: ज्योत्सना, आप क्या करती हैं?
1: मैं टीचर हूँ और मैं आपके प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक आपका सुबह में भी आता है ना, वो आज के कलाकार और
0: जी
1: कुछ बातें कुछ गीत।
0: जी
1: मैम,
0: जी
1: आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: थैंक यू। अच्छा ज्योत्सना जी, और इसके अलावा और क्या आपके शौक हैं? आप क्या करती हैं टीचिंग के अलावा? वैसे तो टीचिंग बहुत अच्छा जॉब है और हमें भी डर के रहना पड़ेगा आपसे।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरी फेवरेट हो।
0: जी अच्छा, आप बताइए और क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मुझे गाने सुनना पसंद है, आपका प्रोग्राम सुनना पसंद है और खाना खाना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के बने हुए हाथों का।
0: अच्छा, मतलब
1: और
0: खाना बनाना
1: बनाना
0: पसंद नहीं है आपको?
1: भी पसंद है, पर जब फ्रेंड बना के खिलाए तो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: हाँ, ये तो सबको पसंद है।
1: हाँ,
0: और
1: और मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, बांसुरी बजाना पसंद है।
0: काफी अच्छे अच्छे शौक रखते हैं आप। और
1: थैंक
0: आपके
1: यू।
0: घर में कोई और भी सुनता है रेडियो?
1: हाँ, मेरी मदर सुनती है मेरे साथ में कभी कभी, या मतलब मैं नहीं होती हूँ तब भी सुनती है।
0: अच्छा जी, अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो वाला गाना सुनना है, वो मैं कोई ऐसा गीत गाऊंगी या आरजू जगाऊं अगर ठीक हो।
0: यस बॉस मूवी का
1: हाँ,
0: जी, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ठीक है, आपको ये गीत सुनवाते हैं और आप आगे भी सुनते रहिएगा आकाशवाणी आगरा और हमें कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर
0: हाँ
1: रहे हैं?
0: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते।
0: मैं राम भरोसे बात कर रहा हूँ मैम।
1: राम भरोसी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं इटावा से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
0: पशुपालन का काम है मैम हमारा।
1: पशुपालन का?
0: जी,
1: तो आप कौन कौन से पशुओं की देखभाल करते हैं?
0: देखभाल तो हम सभी के करते हैं जितने भी हमने पाल रखे हैं, जैसे बकरियां हैं और उसके बाद गाय हैं, भैंस हैं, इन सब की देखभाल करती हूँ।
1: अच्छा,
0: जी जी
1: और इसके अलावा कुछ और करते हैं?
0: इसमें टाइम नहीं मिलता मैम, दूसरा करने का समय कहाँ है हमारे पास, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। घर
1: और आपके घर परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में सब लोग हैं, मतलब वैसे तो सब लोग हैं लेकिन मतलब बड़ा परिवार है मैम, आपकी इतना बताएंगे लंबा हो जाएगा और आप
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: ठीक है। तो आपके घर में भी रेडियो सुनने का शौक रखते हैं सब?
0: मैम, हम तो शुरू से बचपन में हमारा रेडियो से शुरुआत हुई, हमारे खिलौने नहीं थे हमारे पास, हम रेडियो ही सुनते थे शुरू में, हमारे पिताजी थे और
1: जी
0: दादाजी थे तो हम अपने भाइयों को जब खिलाते थे ना गोद में लेके तो रेडियो बजता रहता था और हमें उन्हें

0: थोड़ी गाने नहीं पड़ती थी, हम उसी पे पहला गाना हमने रेडियो पे सुना था वो यशोदा का नंदलाला।
1: अच्छा हाँ जी जी
0: जी, वो बहुत पहले मुझे याद, आज भी याद है वो ये गाना।
1: हाँ तब तो रेडियो का ही जमाना होता था
0: जी,
1: तो सब वही सुनते थे।
0: रेडियो तो एक तरह से मान लीजिए हमारी रग रग या खून में बसा हुआ है हमारे।
1: तो अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैम वैसे इतनी खुशी है कि आप अपनी पसंद का सुनवा देंगे, वो भी हम सुन लेंगे अगर आप सुनवाना चाहें तो।
1: जी हम तो अपनी पसंद से सुनवा ही देंगे, बट अगर आपको कुछ पसंद हो तो आप भी बता
0: सकते। साजन फिल्म का गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
1: ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं
0: जी,
1: और
0: बहुत शुक्रिया मैम,
1: आगे भी कॉल करते रहिएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमने कहा रेडियो हमारी हमारे खून में बसा हुआ है, तो हम तो लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे हमेशा मरते दम तक।
1: जी
0: चलिए
1: कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: जी जी शुक्रिया मैम।

0: हेलो
1: हेलो, क्या ये आकाशवाणी आगरा है?
0: हेलो, मेरी
1: अच्छा
0: पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे
1: जी,
0: हैं?
1: मैं दिवाकर बोल रहा हूँ मैडम।
0: हाँ जी दिवाकर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं कमला नगर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
1: कंप्यूटर पढ़ाता हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो दिवाकर जी, कंप्यूटर पढ़ाने के अलावा आप पूरा दिन और क्या करते
1: मैं कंप्यूटर असेंबल करता हूँ, इसके अलावा इनकम टैक्स का मेरा काम है, शेयर मार्केट का काम है, इंटरनेशनल शेयर मार्केट भी करता हूँ, कमोडिटी भी करता हूँ, गोल्ड सिल्वर का काम भी करता हूँ।
0: हैं? अच्छा, काफी सारे काम आप एक साथ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं।
1: हाँ, बहुत आराम से हो जाता है, बल्कि मन लगा रहता है मैडम।
0: हाँ, ये बात तो अच्छी कही आपने, अगर हम बिजी रहते हैं तो हमारा मन लगा रहता है। तो आपको गीत संगीत में रुचि है?
1: हाँ, बहुत रुचि है मैडम। मैं पुराने से लेकर नए गीत तक सभी तरह के गीतों को सुनता हूँ और सभी जॉनर के गीतों को सुनता हूँ।
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: ये मेरे अंधेरे उजाले ना होते अगर तुम ना आते मेरी जिंदगी में, फिल्म का नाम प्रेम पत्र।
0: ठीक है, हम आपको आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा।
1: जी मैम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

तो श्रोताओं, हेलो मेरी पसंद में आज बस इतना ही। आपका साथ, आपके संदेश और आपकी फरमाइशें इस महफिल को हमेशा ही खास बना देती हैं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे उसके लिए कॉल करते रहिए और अपनी पसंद बताते रहिए। फिलहाल मैं लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुक्ल बिलावल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग शुक्ल विलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बज चुके हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए

0: हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।